0: आपको हमने पहले भी बताया है अबाउट दी ऑकलैंड हेरिटेज फेस्टिवल जो शुरू हुआ था 26 सितंबर से एंड इट्स कमिंग टू एन एंड टुमारो 11th अक्टूबर को. और आज और कल आपके पास समय है टू टेक पार्ट इन वेरियस एक्टिविटीज़. अगर आप अराउंड द ऑकलैंड है तो 4 PM से 6 PM के बीच आज शाम को ब्रास बाइट्स फूड थीम्ड कॉन्सर्ट होने वाला है एट दी जैन हिल मेथडिस्ट चर्च कोना ऑफ बर्कनहेड एवेन्यू एंड ओनेमा रोड. यहाँ पर जाकर आप ब्रास बैंड को विटनेस कर सकते हैं. इसके अलावा चिल्ड्रंस गेम्स ऑफ पाइनिया फैमिलीज बर्कनहेड लाइब्रेरी में कोना ऑफ रोविन रोड एंड हिनमोआ स्ट्रीट पर आप जा सकते हैं. इसके अलावा फ्रूट ग्रोवर्स एट रेस्ट आज 1 से 2 बजे के बीच में आप जा सकते हैं बर्कनहेड में टू विटनेस दिस इवेंट एज वेल. और भी इन्फॉर्मेशन इस हेरिटेज फेस्टिवल के बारे में आपको हम बारी बारी से प्रदान करते रहेंगे.
1: तेरे किट धूम तेरे किट धूम तेरे किट.

ऑकलैंड हेरिटेज फेस्टिवल के बारे में आपको हम बता रहे थे एंड टुमारो ये कंक्लूड हो रहा है संडे 11 अक्टूबर को. तो आज और कल के बीच में आप अगर चाहते हैं टू एक्सप्लोर द पास्ट एंड कैप्चर द मोमेंट, क्योंकि ऐसा करते हुए आप कुछ औसम इनाम भी जीत सकते हैं. आपको जाना है बॉटनी लाइब्रेरी, बॉटनी टाउन सेंटा में, सनसेट टेरेस ईस्ट तमाकी ऑकलैंड में जो है. और यहाँ पर आज एंड टुमारो 9:30 से 5:30 पीएम के बीच में, आज और टुमारो 10 AM से 5:30 पीएम के बीच में यू कैन एक्सप्लोर द पास्ट. क्या है ये? यू विल बी स्टेपिंग इनटू अ टाइम ट्रेवल एडवेंचर एट बॉटनी लाइब्रेरी, फ्लैटबुश लाइब्रेरी, हाईलैंड पार्क लाइब्रेरी एंड पाकुगनरांगा लाइब्रेरी. व्हाट यू हैव टू डू इज यू कैन पोज इन फ्रंट ऑफ देयर स्पेशल हेरिटेज फोटो वॉल्स फीचरिंग अ स्नैपशॉट फ्रॉम द पास्ट एंड इमेजिन योरसेल्फ जंपिंग थ्रू टाइम. फोटो उतारे खुद का एंड शो इट टू द लाइब्रेरियन एंड यू विल रिसीव एन एंट्री इनटू द लाइब्रेरीज प्राइज ड्रॉ. प्राइजेस आर सूटेबल फॉर चिल्ड्रन एज 3 एंड अबव. तो ऑसम टाइम, फन टाइम्स आप व्यतीत करें, फोटो खींचे, लाइब्रेरियन को दिखाए एंड यू विल गोइंग टू द ड्रॉ टू विन सम क्रेजी ऑसम प्राइजेस. ये हो रहा है फ्लैटबुश लाइब्रेरी, बॉटनी लाइब्रेरी, हाईलैंड पार्क लाइब्रेरी, पाकुरंगा लाइब्रेरी में. कॉस्ट वेल बिल्कुल मुफ्त है. सवाल हमने आपसे किया था, आपको बस मैसेज करना था IH लिखकर दैट कंपटीशन इज क्लोजिंग नाउ. जितने भी लोगों ने जवाब दिया, मैसेज भेजा, आप सभी को इस अगले गीत में शामिल कर रहे हैं, स्पेशली अश्विनी गाउंडर, थैंक यू सो मच. पूनम, संगीता राज, सोनाली, विमलेश जी, थैंक यू आपके मैसेज के लिए. हिना है, विम, एफाज जी भाई, आपको हम शामिल कर रहे हैं इस अगले गीत में. अरविंद है, अमन चोपड़ा, फातिमा, प्रिया, धीर, इनके साथ में मलिन, राजीव, एश वेलिंगटन से आप साथ हुए हैं, अंतरप्रीत जी, ज्योति, स्वप्ना, सुनील, आप सभी को हमने ड्रॉ में शामिल कर लिया है.

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: Ladies and gentlemen.
2: Unfiltered with Sandy and Rizvi. Kyunki dunya mein already bahut sare perfect, polished, Instagram-friendly stories hain. Aur unka humse koi lena dena nahi. Yahan kahaniyan hoti hain raw. Emotions hote hain real. Aur conversations hote hain bina mask ke.
3: Raja, mantri, chor, sipahi, sab yahan the.
2: Unfiltered with Sandy and Rizvi. On Rowa, Spotify, or anywhere you get your podcast.
4: Discover the magic at Go Bananas Child. जहां आपके बच्चे सीखेंगे इन अ फन वे विद मल्टीपल ब्रांचेस अक्रॉस ऑकलैंड एंड हैमिल्टन ये हमेशा आपके पास है गो बनाना चाइल्ड केयर 12th बर्थडे ऑफर 6 मंथ्स कंप्लीटली फ्री एंड द फॉलोइंग 6 मंथ्स 50% ऑफ ऑन फीस फॉर ऑल एजेस ऑफर एंड्स 30th सितंबर लिमिटेड स्पेसेस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड तो जल्दी ज्वाइन करो और एंजॉय करो स्पेशल ऑफर्स कॉल 0800 46 26 26 टुडे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
5: This weekend's to-do list is filling up fast. Kids' activities, visiting the grandparents. But Woolworths takes going shopping off the list with delivery right to my door. I can even sit down before it arrives. That's my kind of Woolies.
6: Celebrate Macca's 50th with the Meal Steal Combo for $17. That's a Big Mac, cheeseburger, fries, a soft drink, plus a birthday bonus from the warehouse or time zone for a limited time. The Meal Steal Combo. On now at Macca's. T's and C's apply.
4: Mental health is part of our overall health. जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप overwhelmed हैं या emotions manage करने में struggle कर रहे हैं, तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है। Asian Family Services आपके कल्चर को समझते हैं और professional, confidential और free emotional support देते हैं। Call Asian Helpline Free on 0800-862-342. अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें
7: Oh, the kids absolutely love Fiji. They were in the water basically the whole time, snorkeling, kayaking, jumping off the pontoon. They loved the kids club and so did we. Then there was the hermit crab racing.
8: In August, the Miles family needed to make an urgent claim for stolen property while they were in Fiji, thanks to AA Travel Insurance. That wasn't the story they came home with. AA Travel Insurance. On with the trip. Travel insurance issued by Zurich Australian Insurance Limited. Illustrative example only. Limits, sublimits, conditions and exclusions apply. Consider your own needs and read the policy wording.
9: Hi, I'm Murray Harris, Head of KiwiSaver at Milford. We're delighted to have just won Canstar's KiwiSaver Provider of the Year and Outstanding Value KiwiSaver Scheme Awards for a record 7th year in a row. Canstar recognised us not just for our long-term returns, but also for the support and confidence our members say we provide. And that's another really good reason to choose Milford.
10: Past performance is not a reliable indicator of future performance. Milford Funds Limited is the issuer of the Milford KiwiSaver Plan. Please read the product disclosure statement at milfordasset.com.
0: Bollywood ke sabse bade hit gaane. Azara le le tu
2: masa. Hum, playing Bollywood's biggest hits. Yeah.
11: Yo.
2: Big Radio Pub.
11: रेडियो पब का सफर जारी है 23 मिनट्स आफ्टर वन मैं हूं जिकाश आपका साथ दे रहा हूं एंड नाउ रोवा के बारे में आपको हम बताते थकते नहीं हैं क्योंकि इस पर हम बहुत मेहनत करते हैं हमारी हम की टीम एनावा हमारा ब्रांड मीडिया वर्क्स और हमारी जितने भी सिस्टर स्टेशंस है ये सभी बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं टू कीप रोवा लाइव एंड फुल ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर यू क्योंकि आप ही है जिन्होंने हमें नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन बनाकर रखा है इन न्यूजीलैंड और इसके लिए आपको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं एंड आपको थैंक यू कहने के लिए अपना ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए हमने रोवो पर डाले हैं कई सारे कॉम्पिटिशन्स कई सारे कॉन्सर्ट्स जिसके लिए आप ढेर सारे टिकट्स जीत सकते हैं नाउ रोवा है आपके पास अगर आप हमें रोवा पर सुन रहे हैं थैंक यू सो मच अगर आपने रोवा डालकर रखा है फ़ोन पर लेकिन इसे आप खोलते नहीं है वेल नाउ अभी आप रोवा पर जाए क्योंकि हम अभी आपको कुछ बताना चाहते हैं ओपन योर रोवा ऐप नाउ एंड जब आप रोवा ऐप ओपन करेंगे आई एम यूजिंग एन आईफोन तो आई एम नॉट श्योर कि एंड्रॉयड पर कैसा दिखता है लेकिन इट्स प्रीटी सिंपल रोवा ऐप आप खोले वंस यू हैव रजिस्टर्ड यू हैव टैब्स जहाँ पर लिखा है होम रेडियो पॉडकास्ट वीडियोज आर्टिकल्स जिसके नीचे हमने कई सारे कॉन्टेंट डाले हुए हैं प्ले लिस्ट है इवेंट्स कहाँ पर क्या हो रहा है कहाँ पर हम क्या कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंड देयर इज़ अ विन सेक्शन एज वेल और विन सेक्शन पर आप जाए एंड इफ़ यू स्क्रॉल थ्रू यू हैव अ लॉट ऑफ यू सी अ लॉट ऑफ इवेंट्स हैपनिंग अ लॉट ऑफ प्रमोशंस हैपनिंग जिसमें आप थ्रू रोवा हिस्सा ले सकते हैं एंड यू कैन गेट इनटू द ड्रॉ अ फ्यू मेजर वंस जो आपको हम बताना चाहते हैं इज द ब्रूनो मास कॉन्सर्ट ब्रूनो मास को भाई कौन नहीं जानता है तो ये कब आ रहे हैं ये डेट्स वहाँ पर दिए गए हैं एंड यू कैन गेट इनटू द ड्रॉ टू विन सम पासेस इसके अलावा एक बहुत ही बढ़िया सा स्पा पूल है ये भी आप जीत सकते हैं एंड विन मोर एक्सेस टू गो मीडिया एनजेड ट्रॉटिंग कप ये क्या है इसके बारे में भी जानकारियाँ हम आपको प्रदान करते रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं गो टू रोवा नाउ और चेकआउट करें कि विन सेक्शन के नीचे आप कितने सारे कॉम्पिटिशन्स में शामिल हो सकते हैं

0: फिजी फुटबॉल एसोसिएशन इंटर डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप जारी है एंड आज सेमीफाइनल्स के खेल हो रहे हैं एंड सीनियर डिवीजन में आज सुबह खेल हुआ बिटवीन ड्रकेती एंड तव्यूनी. ड्रकेती हैव मेड देयर वे इनटू द सीनियर डिवीजन फाइनल विद बुआ. ड्रकेती ने तव्यूनी को हराया 3-0 से. बुआ ने नंदोंगो फुटबॉल क्लब को हराया 5-4 से इन द पेनल्टी शूट आउट्स. फिलहाल खेल हो रहा है इन द प्रीमियर डिवीजन HFC बैंक स्टेडियम सुबह में, जहां पर तवो फुटबॉल क्लब और सेंगांगा फुटबॉल क्लब आमना सामना कर रहे हैं. सेकेंड हाफ का खेल बस शुरू ही हुआ है एंड तवो आर लीडिंग सेंगांगा बाय 1-0.
1: You're listening to Chikash.

0: जब से मेरे
1: Playing Bollywood's biggest hits.
2: बजे हिट गाने.
3: Hey ChatGPT, दिवाली आने वाली है. ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
4: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ.
3: बढ़िया है. अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए. और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
4: इंटरेस्टिंग. और कुछ?
3: बस इतना ही.
4: सर, मैं ChatGPT हूँ, अंबानी नहीं. हमसे ना हो पाएगा.
5: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश. फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry. And Fortune, bring home the fortune.
6: Save big at Rebel and get the kids sorted for back to school. Grab a huge range of kids' running shoes for just $69. Get 20% off selected bags and bottles. Plus, score an extra 20% off all clearance. Back to school value is on now. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
7: Discover the magic at Go Bananas Childcare, jahan aapke bachche seekhenge in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ye hamesha aapke paas hai. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer. 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. To jaldi join karo aur enjoy karo special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
8: At Bunnings, spring starts in the garden and we've got what you need to get stuck in.
9: Whether you're a long time gardener or you're getting your hands dirty for the first time, we can help you bring some life to your backyard.
10: Start gardening for less this spring at Bunnings.
11: Bunnings Warehouse.
12: Keen to score 20 cents per litre off your fuel? Scan Club Plus from Friday to Sunday when you spend $100 at New World, Pack and Save or Foursquare. That's some smart shopping. T's and C's and exclusions apply.
13: Huh? Free gold coins on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
14: Yes, Bebo.
13: Catch kya hai?
14: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free gold coins. Saath hi selected jewelry par diamond value aur making charges mein up to 40% off ka fayda uthao.
13: I still can't believe it. No catch.
14: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds, Botany Town Center, East Auckland.
15: PNC Supply.
16: With unmissable deals and huge reductions on the rest of the store, the savings are just too good to miss this weekend at Briscoe's. Shop unmissable deals and huge reductions on the rest of the store. But hurry, end Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
17: The beat of Bollywood.
18: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
19: Yo.
17: Radio Pub.
20: Radio Pub mein Jikash aapka saath de raha hoon and I keep you updated about what's happening around you in terms of sport. Aaj hai 10 tarikh October. Aaj to Bloody Slow Cup ka pehla leg match hone wala hai. Aaj Eden Park par 7:10 PM par All Blacks aur Wallabies aamna samna karenge. Iske alawa, we are getting very close to the Rugby League World Cup. Yes, 15th October ko Australia mein pehla match hoga between the Kangaroos and the New Zealand Kiwis in the Rugby League World Cup. फर्स्ट मैच जो होस्ट किया जा रहा है वह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड पापुआ निगिनी. और दूसरी ओर 16th अक्टूबर को इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल द जिलरूज आर टेकिंग ऑन द सामोन वीमेंस रग्बी लीग टीम. तो मेंस एंड वीमेंस वर्ल्ड कप हैपनिंग साइमल्टेनियसली और इस साल इन सभी पर अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे. इसके अलावा आई लीग भी शुरू हो रहा है अगले वीकेंड से. मालूम है आपको? अगर नहीं मालूम है तो भाई इसके बारे में भी जानकारी आपको हम प्रदान करेंगे इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स. और इसको छोड़कर फिजी फुटबॉल एसोसिएशन का IDC टूर्नामेंट जारी है एंड फर्स्ट हाफ में तवा वाज लीडिंग बाय 1-0. सेकंड हाफ स्टार्ट होते ही सेंगागा पुल्ड वन बैक 1-1 किया और अभी थोड़ी देर पहले सेंगांगा हैज स्कोर्ड अगेन. तो सेंगांगा आर इन द लीड. मोहम्मद इशरत कंप्लीटेड हिज डबल फ्रॉम द पेनल्टी स्पॉट इन द 73rd मिनट टू गिव सेंगांगा a 2-1 lead over Taubo Football Club in the first Premier Division semi-final of the 86th FMF Inter-District Championship happening at the HFC Bank Stadium in Suva.

इलेक्शंस इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, आपको पता है ना, नवंबर 7th इज द डे जहां पर जनरल इलेक्शंस होल्ड किए जाएंगे इन न्यूजीलैंड। और इसके लिए आपको एनरोल कर लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस साल ऐसा नहीं है कि यू कैन एनरोल ऑन द वोटिंग डे। इस साल एनरोलमेंट्स फॉर वोटिंग फिनिशेस ऑन द 25th ऑफ अक्टूबर, आज है 10 तारीख। अभी से आप अगर कोशिश करेंगे तो 25th होते होते अपने आप को आप एनरोल कर लेंगे। elections.nz पर जाए, वहाँ पर लिंक है, या फिर vote.nz पर जाए, वहाँ पर भी लिंक है। यू कैन चेक इफ़ यू आर एलिजिबल टू वोट, एंड इफ़ यू आर, अगर पहली बार वोटिंग करने जा रहे हैं तो एनरोल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। vote.nz या फिर elections.nz पर जाए, गेट योरसेल्फ एनरोल्ड बिफोर 25th अक्टूबर, अदरवाइज यू वॉन्ट हैव अ से कि गवर्नमेंट कौन बनाती है, यू वॉन्ट हैव अ से कि गवर्नमेंट ऐसा कर रही है वैसा कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपके आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट किया जाए इन द पार्लियामेंट, आप जो चीज़ विश्वास करते हैं, व्हाट यू बिलीव नीड्स टू हैपन इन न्यूजीलैंड, उस चीज़ को प्रेजेंट किया जाए इन पार्लियामेंट, यू नीड टू वोट फॉर द पार्टी दैट अलाइंस विथ योर बिलीव्स, दैट अलाइंस विथ व्हाट यू स्टैंड फॉर एज अ ह्यूमन बींग। तो 25th अक्टूबर से पहले खुद को आप एनरोल करा ले, vote.nz या फिर elections.nz पर जाकर आपको लिंक मिलने वाला है।

0: Yo.
1: Big Radio Pub.
2: It's 3 minutes after 2 PM. मैं हूँ जिकाश. रेडियो पब में आप मेरा साथ दे रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर दैट. लगे हाथ आपको याद दिला दे अबाउट ए लीग टूर्नामेंट या फिर ए लीग ये शुरू हो रहा है कमिंग वीकेंड. 28 वीक्स के लिए राउंड रोबिंग मैचेस होने वाले हैं जिसके बाद में फाइनलिस्ट घोषित किए जाएंगे. तो लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट मैच. फ्राइडे को 10 बजे रात्रि को सिडनी फुटबॉल क्लब आर होस्टिंग वेस्टर्न सिडनी वंडरर्स एंड आवर ओन ऑकलैंड फुटबॉल क्लब. आवर ओन मतलब इधर नॉर्थ आइलैंड की टीम, अपर नॉर्थ आइलैंड की टीम ऑकलैंड फुटबॉल क्लब. द विनर्स आर होस्टिंग मेलबर्न सिटी फुटबॉल क्लब एट द गो मीडिया स्टेडियम ऑन सैटरडे 17th ऑफ अक्टूबर 5 बजे शाम को. वहीं पर वेलिंगटन फिनिक्स आर प्लेइंग मेलबर्न विक्ट्री इन वेलिंगटन संडे 18th अक्टूबर को एट 3 PM. वीमेंस लीग की ओर देखें तो वेस्टर्न सिडनी वीमेंस टीम और मेलबर्न विक्ट्री आर प्लेइंग एट 5 PM ऑन सैटरडे एंड न्यूकासल जेट्स ऑल्सो ऑन सैटरडे 5 PM पर्थ ग्लोरी से खेल रहे हैं. 2 बजे निकल आए हैं. इफ़ यू हैव जस्ट जॉइंड, आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं इन रेडियो पब जहां पर एक से एक बढ़कर नगमे और जानकारियां आप तक हम प्राप्त पहुंचाते रहते हैं. एंड ऑन दिस आवर अनदर चांस आपको मिलने वाला है टू गेट इनटू द फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून रोज 2026 फॉर दिवाली. कीप हमिंग एंड डू नॉट मिस एनी मिनट विथ हम.

0: Brandsmeer.
1: अपने आप को फिट रखना, हेल्थी रखना और एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है. एंड पीपल हु डू को स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज या फिर को अपने पेट को भीतर करने के लिए और अपने एब्डोमेन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक एक्सरसाइज है जिसको कहते हैं प्लैंक. प्लैंक करना मतलब जो जानते हैं इसके बारे में वो जानते हैं, होल्डिंग योर सेल्फ अबव द ग्राउंड एंड स्टेइंग अप ऑन योर एल्बोज एंड टोज. तो अगर आप प्लैंक करते हैं सबसे ज़्यादा समय तक आपने प्लैंक कितने देर तक होल्ड किया है, हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड योर प्लैंक, ये आपसे हम जानना चाहते हैं. शायद एक मिनट, आई कैन बेली गो पास्ट टू मिनट, तो आई थिंक दैट्स माई पर्सनल बेस्ट. लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बहुत फिट है एंड दे कैन डू मे बी 10-20 minutes whatever. अगर आप प्लैंक करते हैं आपसे हम जानना चाहते हैं कि हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड योर प्लैंक, अ गुड प्लैंक जब आप एक्सरसाइज करते हैं. 5599 पर अपना जवाब दे, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ है अबाउट होल्डिंग अ प्लैंक और इस इवेंट का रिजल्ट हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं. इफ यू आर गुड एट होल्डिंग योर प्लैंक, कितनी देर तक आप प्लैंक होल्ड कर सकते हैं व्हेन यू डू योर एक्सरसाइज. 5599 पर हमें ज़रूर बताएं.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Yo.
1: Big Radio Pub.
2: आपसे हमने पूछा था कि कितनी देर तक आप प्लैंक होल्ड कर सकते हैं जब आप को एक्सरसाइजेस करते हैं, एंड किसी ने लिखा 1 मिनट, किसी ने लिखा कि 3 मिनट्स, किसी ने लिखा कि आई कैन होल्ड अ प्लैंक फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट. भाई आई डोंट वांट एनीथिंग. एनीवेज, क्यों हमने आपसे ये सवाल किया, क्योंकि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया गया है अभी हाल ही में. एंड इफ़ यू डू प्लैंक, आप तो जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है टू होल्ड अ प्लैंक फॉर यू नो एन एक्सटेंडेड अमाउंट ऑफ टाइम. तो प्लैंक होल्ड करना और इसका एक अलग ही रिकॉर्ड बनाना, 5 घंटों में आप क्या कर सकते हैं? 5 घंटे देखें तो अगर आपने ट्रेवल किया है टोरंटो से वैंकूवर, यू कैन फ्लाई डायरेक्ट फॉर 5 आवर्स, इन 5 आवर्स. या फिर अगर आप गोल्फ खेलते हैं, यू कैन प्ले एन एंटायर 18-hole राउंड ऑफ गोल्फ. या फिर एक फुल मैराथन आप रन कर सकते हैं एट एन एवरेज पेस इन 5 आवर्स. 5 घंटे बहुत लंबा टाइम है. वेल, 5 आवर्स, दैट्स द न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड. डोना जीन वाइल्ड, ये एक ग्रैंड मदर है ऑफ 12, सेज शी मल्टीटास्क टू पास द टाइम. अल्बर्टा की ये महिला है, 61 वर्ष की है, एंड शी हैज़ ब्रोकन हर ओन वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय प्लैंकिंग फॉर 5 आवर्स. इन्होंने कहा कि आई जस्ट लव इट. एज्ड 61, शी ब्रोक हर ओन वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम होल्डिंग एन एब्डोमिनल प्लैंक पोजिशन इन द फीमेल कैटेगरी ड्यूरिंग द हंसमैन वर्ल्ड सीनियर गेम्स इन यूटा इसी सप्ताह. वाइल्ड, अ ग्रैंड मदर ऑफ ए 12-year-old एंड रिटायर्ड टीचर फ्रॉम वेलिंग अल्ट्रा, एंड ट्यूजडे को इन फ्रंट ऑफ चीयरिंग क्राउड एंड सेवरल जजेस शी हेल्ड एन एब्डोमिनल प्लैंक फॉर 5 straight hours, शटरिंग हर प्रीवियस 2024 वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 4 hours 30 minutes and 11 seconds. भाई 5 घंटे कौन करता है, कौन कर सकता है? वेल, 61 ईयर्स की इस महिला ने कर दिखाया है.

0: Yo.
1: Big Radio Pub.
2: अपने मेंटल वेलबींग को सही रखना उतना ही ज़रूरी है जितना अपने आप को आप फिज़िकली फ़िट रखते हैं। एंड आजकल के इस समय में बहुत सारे स्ट्रेस हो जाते हैं, वेदर इट बी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन या फिर जिम्मेदारियों को लेकर कुछ मेंटली हम स्ट्रेस्ड हो ही जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ऐसा कुछ फील कर रहे हैं तो यू रीच आउट एंड सीक हेल्प। मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ। Just as we care for our body, it is okay to seek support for our mind too. If you are feeling overwhelmed or struggling to manage your emotions, you do not have to face it alone. Asian Family Services offers free, confidential and professional emotional support from people who understand your culture. Call Asian Helpline free on 0800-862-342. That is free helpline 0800-862-342. If you or someone you know is in immediate danger, you can call straight away to 111.

Radio Pub. इलेक्शंस अगले ही महीने हैं एंड इसके लिए तैयारियां बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल पड़ी है एंड वी आर ऑल्सो डूइंग आवर बिट ताकि आप इन्फॉर्म रहे अबाउट पार्टीज एंड पॉलिसीज एंड इलेक्शन स्पेशल ड्राइव शो पॉडकास्ट ये आपके लिए हम जारी कर रहे हैं. सैंडी एंड रुजबे हैव बीन टॉकिंग टू अ फ्यू पीपल एंड इस बार लेबर कैंडिडेट खरग सिंह जो तकनीनी में कैंपेन कर रहे हैं इनको बुलाया गया एंड यू कैन हियर व्हाट ही हैड टू से. इनसे बातें की गई अबाउट स्मॉल बिजनेसेस एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग, सुपरमार्केट कंपटीशन, रिटेल क्राइम, कम्युनिटी सेफ्टी, पॉलिसिंग, ट्रैफिक, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हिज विजन फॉर तकनीनी एंड साउथ ऑकलैंड. ये सभी चीज़ हम सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये सभी टॉपिक्स वी ऑल रिलेट टू एवरीथिंग दैट आई हैव जस्ट सेड इन वन वे ऑर अनदर. इस ड्राइव शो पॉडकास्ट में we also got his take on the latest political debate between Chris Hipkins and Christopher Luxon and kya kehna hai candidate Kharag Singh ka ye agar aap janna chahte hain labor ne kya plan karke rakha hai for south auckland and jo policies labor lekar aane wale hain ya phir lekar aana chahte hain after elections kya ye aapke liye faydemand rahengi ya nahi ye agar aapko janna hai aapko full conversation sunna hai ड्राइव लिखकर भेजिए 5599 पर अभी एंड आई विल सेंड यू अ लिंक फॉर दिस पॉडकास्ट जहां पर इंटरव्यू किया गया है खरग सिंह से जो कि एक लेबर कैंडिडेट है फॉर तकनीनी ऑन हम. तो देर किस बात की, ड्राइव लिखकर भेजिए 5599 पर फॉर योर चांस टू लिसन टू दिस ऑसम ऑसम पॉडकास्ट जहां पर बहुत चीज़ों के बारे में खुलासा किया गया है.

0: Radio Pub.
1: ओके, इट्स टाइम फॉर यू टू एंगेज विद अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. फेसबुक पर अभी आप जाए, मैंने वहाँ पर एक फिजी डे सेलिब्रेशन का फोटो डाला हुआ है. उस फोटो के नीचे अपना फिजी डे सेलिब्रेशन फोटोज आप डालिए. वाइल आई वॉज कमिंग टू वर्क, आई सो सम ब्यूटिफुल पीपल इन ब्यूटिफुल वाइब्रेंट ब्लू एंड वाइट कलर्स, एंड सम पीपल हैव वेयर वेयरिंग पर्सनलाइज टॉप्स एंड जीन्स. तो इफ यू आर लिसनिंग टू मी, take a photo of yourself, of your family vibing on this awesome Fiji Day, celebrating Fiji Day, और उस फोटो को डाले under the photo जो मैंने डाली है अभी Facebook पर. उसके comment section में आप अपना फोटो डाले, अपने family का फोटो डाले, या फिर आप जो भी कुछ कर रहे हैं on Fiji Day, ये आप हमें बतलाएं, and let's see कितने लोग हमारे साथ शामिल हैं in this celebration.

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन
3: With unmissable deals and huge reductions on the rest of the store, the savings are just too good to miss this weekend at Briscoe's. Shop unmissable deals and huge reductions on the rest of the store. But hurry, end Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
4: It's Macca's 50th birthday. And to celebrate, we're giving you 1 in 3 chances to win food prizes. Order ticketed items using the Macca's app to play. The more the merrier at Macca's 50th. T's and C's apply.
5: 35 minutes and we've moved 3 kilometers.
6: Welcome to peak hour commute, babe.
5: Maybe I should use this time to check if I'm eligible to vote.
6: Over 18? Lived here for more than a year? And a resident for electoral purposes?
5: Yeah, that sounds like me.
6: Then why don't you enroll now? Only takes a few minutes.
5: Well, you're driving, so I'll do it now.
6: That was quick and easy.
7: Last chance to enroll is midnight 25 October. Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
0: Bollywood ka asli blockbuster.
8: Pure sheher pe kabza hoga, raj hoga.
0: Playing Bollywood's biggest hits.
9: Huh. Yo.
0: Big Radio Pub.
10: Hey, Kira, and welcome back to Radio Pub, जहाँ पर ठीक 3 बज रहे हैं मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ 104.2 FM and on Rova इस घंटे पर और भी बातें करेंगे and I've got an interesting article in my hand about the hidden side effect of weight loss drugs काफ़ी लोग हैं जो weight loss journey पर हैं and some do it quite well managing their diet and exercising कुछ लोग हैं जो shortcuts लेना चाहते हैं कुछ लोग हैं जो medically एक्सरसाइज कर नहीं पा रहे हैं लेकिन वेट इनको लूज़ करना है तो इनको प्रेस्क्राइब किया जाता है वेट लॉस ड्रग्स तो इसको लेकर अभी इसी सप्ताह पूर्व एक आर्टिकल पब्लिश हुई है जिसके बारे में जानकारी हम आपको देंगे एंड आई ऑल्सो पुट दिस आर्टिकल ऑन आवर फेसबुक पेज तो कीप एन आई आउट ऑन दैट एज वेल और इस घंटे पर हमारा अगला कॉम्पिटिशन फॉर फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून ये भी हम रन करेंगे बस थोड़ी देर में तो फोन्स आप रेडी रखें याद रहे जब आप हमें मैसेज करते हैं स्टैंडर्ड कैरियर रेट सप्लाई एंड जो भी हम कहेंगे आपको मैसेज करना है आपको एग्जैक्टली इन दैट वे आपको हमें मैसेज भेजना लास्ट टाइम हमने कहा था आई हैच लिखकर हमें आप अपने नाम के साथ भेजें किसी ने आई स्पेस हैच लिखा है तो दैट मैसेज वुड नॉट गो इनटू द ड्रॉ आवर सिस्टम पिक्स द एग्जैक्ट फॉर्मेट जो हम आपको बताते हैं तो कीप लिसनिंग क्योंकि थोड़ी देर में हम आपको मौका देंगे टू गेट इनटू द ड्रॉ टू विन $1,000 वर्थ ऑफ हैरिंगटन लिविंग होम डेको और फर्नीचर वाउचर किसी एक लकी विजेता के मिलने वाला है इन द फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून फॉर दिस दिवाली तो सुनते रहें हम बताएंगे आपको कब मैसेज करना है आइए शुरुआत करते हैं इस घंटे की विथ द वॉइस ऑफ अली जफर

0: to be a mom.
1: How many of you follow Hustle? Hustle apne 5th season mein pahunch chuka hai and it's gone into its finale. And finale ho raha hai वैसे शनिवार की रात्रि और रविवार की रात्रि को एपिसोड्स आ जाते हैं ऑन नेटफ्लिक्स, लेकिन फिनाले न्यूजीलैंड समय अनुसार अगर हम देखें तो MTV हसल सीजन 5 ग्रैंड फिनाले दिस विल स्ट्रीम एंड ब्रॉडकास्ट एट 2:30 AM ऑन संडे अक्टूबर 11th एंड 2:30 AM मंडे अक्टूबर 12th. Finale episodes are scheduled to air on MTV in India and stream on Jio Hotstar at 7 PM Indian Standard Time. तो आज अगर आप इंडिया में हो तो इंडियन टाइम 7 PM फिनाले शुरू होगा. दो पार्ट्स में इसको बांटा गया है, वन हैपनिंग ऑन सैटरडे, वन हैपनिंग ऑन संडे न्यूजीलैंड में संडे मॉर्निंग एंड मंडे मॉर्निंग. तो इफ़ यू फॉलो दिस वेल देयर यू गो, फिनाले इसी वीकेंड होने वाला है. फिनाले को लेकर वैसे अभी हाल ही में आपने कुछ रील्स या फिर वीडियोस देखे होंगे अबाउट मेजर फायर. ह्यूज फायर ब्रोक आउट नियर पति पत्नी और पंगा 2 एंड हसल 5 सेट्स इन मुंबई फिल्म सिटी. इसमें लकली कोई भी कैजुअलिटीज़ नहीं थे, लेकिन हसल 5 और पति पत्नी और पंगा 2 इसके सेट्स पर आग लग चुकी थी, तो जिसको लेकर फिर रिकॉर्डिंग को शिफ्ट किया गया था.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

आई होप आपने समय का इस्तेमाल बहुत ही बढ़िया से किया है और हमारे पास मैसेज कर ही दिया होगा। जस्ट टेक ए क्विक लुक। हाँ, काफ़ी लोगों ने मैसेज किया है। डीना, अविनाश, वीरन मुदलियार, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। सुनीता है, डीना दोबारा आपने मैसेज किया है। स्वप्ना है, मुकेश, रिया, आपको हम इस अगले गीत में शामिल कर रहे हैं। शनाया, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। शेरन एंड किसी ने HL लिखा लेकिन नाम नहीं लिखा है। एनीवेज, सचिल चंद्रा, थैंक यू सो मच। साहिल, आपका भी मैसेज हमें मिला है। नेत्रा जी है, रितेश, नी लता, उपासना एंड किसी ने और मैसेज किया है, नाम नहीं लिखा है। वेल, यू जस्ट मिस्ड आउट। एनीवेज, आप सभी को इस अगले गीत में हम शामिल कर रहे हैं। नाउ, इस घंटे का अगला सवाल हम आपसे करने जा रहे हैं। एक एक्टर है जिनके कुछ ऑन स्क्रीन करेक्टर नेम्स हम आपको बताएंगे और आपको बताना है कि ये कौन से शख्स हैं। तो ऑन स्क्रीन नेम जोसेफ ब्रिगेंजा, ऑन स्क्रीन नेम इंस्पेक्टर साधु अगासे, ऑन स्क्रीन नेम तबरेज आलम, ऑन स्क्रीन नेम गणपतराव अप्पा बेलवालकर, या फिर ऑन स्क्रीन नेम विश्वनाथ। ये कौन से एक्टर के ऑन स्क्रीन करेक्टर नेम्स है? विश्वनाथ, जोसेफ ब्रिगेंजा, इंस्पेक्टर साधु अगासे, तबरेज आलम, राकेश मारिया, गणपतराव अप्पा बलवालकर एंड अभी 2024 में फिल्म आई जिसमें इनका नाम था दीपक त्यागी। किन के बारे में हम बातें कर रहे हैं? इफ़ यू लव दिस पर्सन एज एन एक्टर, आप तो जानते होंगे कि किसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। अगेन आई विल रिपीट इट, एक और फिल्म थी परिंदा, 1989 में आई, इसमें अन्ना सेठ का रोल उन्होंने किया था। विश्वनाथ इन 1996, विश्वनाथ इनका ऑन स्क्रीन नेम था। जोसेफ ब्रिगेंजा 1996 की मूवी में इनका एक नाम था। और तबरेज आलम अपहरण 2005 में फिल्म आई थी, उसमें इनका ऑन स्क्रीन नेम तबरेज आलम था। किसके बारे में हम बातें कर रहे हैं?

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: A message for all parents. Kids age 12 and under can now ride their bikes on footpaths, and parents or caregivers can ride with them. Remember to look out for children on bikes when driving in and out of driveways. Learn more at nzta.govt.nz.
3: Big Bazaar mein biggest range of puja ghar mil rahe hain. Pure marble murtis, copper murtis, gunmetal murtis, devi devtao ke vastra. Sabhi tarah ke haar and extensive range of puja items. Big range of console tables, mirrors, curtains, sofa covers. Veena and Lahore brand of musical instruments bhi available hain. Big Bazaar 302 Great South Road, Papatoetoe. Your one-stop shopping destination this Navratri.
4: Shop fresh deals at New World North Island this week. Get skinless chicken thigh cutlets, $11.99 per kilo. Or avocado, $2 for $2.50. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
5: विदेश से लोगों को यहाँ काम करने के लिए अब एम्प्लॉयर अक्रेडिटेशन कंपलसरी हो गया है। इमिग्रेशन के नए रूल्स और परेशानियों से बचने में आपको मदद करेंगे ओकलैंड साउथ इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के अतीश नारायण। अपॉइंटमेंट्स के लिए फोन करें 0800-168-472 पर। अतीश नारायण और उनकी टीम आफ्टर आवर्स और वीकेंड्स पर भी अवेलेबल रहते हैं। फॉर मोर डिटेल्स विजिट देयर वेबसाइट asic.co.nz।
6: With unmissable deals and huge reductions on the rest of the store, the savings are just too good to miss this weekend at Briscoe's. Shop unmissable deals and huge reductions on the rest of the store. But hurry, end Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
7: Bollywood ke sabse bade hit gaane.
8: Kabhi bhi, kahin bhi. Mast malang jo.
9: Yo. Big Radio Pop.

0: Radio Pub.
1: Hey, kia ora and welcome back to Radio Pub, जहां पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूं. 3 मिनट हो चुके हैं 4 बजकर एंड अन्य समाचारों में इन फिजी इंटरडिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप जारी है एंड आज सेमीफाइनल्स के खेल हुए हैं. सुबह से ड्रेकेती ने तबिनी को 3-0 से पछाड़ा है इन द सीनियर डिवीजन एंड बुआ की जीत हुई ओवर नंदोंगो 5-4 से. तो सीनियर डिवीजन फाइनल जो कल खेले जाएंगे इसमें बुआ और ड्रेकेती एक दूसरे का आमना सामना करेंगे. प्रीमियर डिवीजन में सेंगांगा ने 3-1 से ताबुआ को हराया है. सो सेंगांगा विल बी प्लेइंग अगेंस्ट किरिबास जिनको इनविटेशन मिला था टू टेक पार्ट इन दिस ईयर्स आईडीसी. किरिबास डिफीटेड फिजी अंडर 17 टीम बाय 3-1. तो कल प्रीमियर डिवीजन के फाइनल में सेंगांगा विल बी टेकिंग ऑन किरिबाती या फिर किरिबास. सुपर प्रीमियर डिवीजन का सेमीफाइनल 1 ये बस अभी ही शुरू हुआ है बिटवीन रेवा एंड नाबुआ और उसके बाद बा और लंबासा आमना सामना करने वाली है. हु डू यू थिंक विल टेक दिस वन आउट बिटवीन रेवा एंड नाबुआ? क्या रेवा नाबुआ को हरा सकती है या फिर इट विल बी नाबुआ जो रेवा पर भारी पड़ने वाली है? अपना प्रेडिक्शंस आप हमें दें, स्पेशली पीपल फ्रॉम फिजी जो रेवा से बिलोंग करते हैं, नसोरी से बिलोंग करते हैं एंड द डेल्टा टाइगर्स. नाबुआ से अगर आप है, सेंड मी योर प्रेडिक्शंस ऑन 5599. क्या सोचते हैं आप कि क्या आपकी टीम जीत सकती है रेवा से या फिर रेवा वालों? डू यू थिंक योर रेड कलर्स विल बी कवरिंग ऑल ऑफ नाबुआ?

0: Bollywood.
1: World's best हमारी कोई branch नहीं है.
2: नौ मिनट हो चुके हैं 4:04 एंड इफ यू हैव जस्ट ज्वाइन आप सभी का स्वागत कर रहे हैं इन रेडियो पब जहां पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूं. लेट्स हैव अ क्विक लुक एट वेदर टुनाइट फॉर द अपकमिंग मैच जो आज 7:05 पर होने वाला है ईडन पार्क में. ब्लडिस्लो मैच 1 ऑल ब्लैक्स वर्सेस द वॉलबीज. आज रात को ठंड पड़ेगी अराउंड 14 डिग्रीज. मौसम साफ सुथरा रहने वाला है और बढ़िया रग्बी मैच हम सब इंजॉय करने वाले हैं. Are you going to the grounds? Yes. तो भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें क्योंकि जब भी कुछ मेजर इवेंट्स होते हैं ऑकलैंड में, ऑकलैंड सिटी में या माउंट ईडन पर, तो भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाती है क्योंकि लोग एंजॉय करना चाहते हैं. एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो और भी बढ़िया हो चुका है विद द ओपनिंग ऑफ द सिटी रेल लिंक, तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाए. आई एम प्रीटी श्योर आपके मैच टिकट्स में आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ कवर्ड, तो मेक श्योर यू टेक एडवांटेज ऑफ दैट. क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि उबर कर लेंगे, यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि जब इवेंट्स होते हैं उबर के प्राइजिंग, राइट शेयर के प्राइजिंग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. तो मेक श्योर यू नो टेक एडवांटेज ऑफ आवर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. तो वेदर हो गया 14 डिग्रीज आज रात का, बढ़िया मैच होने वाला है. कल क्या होने वाला है, संडे के लिए बताया गया है शावर्स पॉसिबली हैवी ईजिंग टू द ओड लाइट शावर बाय मिड डे, स्कैटर्ड रेन डेवलपिंग लेट इवनिंग. देयर यू गो, अकॉर्डिंगली आप अपना फंडे संडे प्लान कर सकते हैं.
0: हम पर आपके साथ हैं जिकाश.

0: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
1: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
0: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
1: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
0: बस इतना ही।
1: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
2: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune.
3: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800-634-234. TCs and lending criteria apply.
4: Hey you with the ears, your skinny phone plan now has rewards. So, all your scrolling, tapping, babe, wake up, look at this meme. Ha-ha reacts and thumbs up from dad will actually pay off. Join Skinny and renew 3 times in a row to collect up to 1,000 everyday rewards points. Skinny and everyday rewards accounts must be linked. See skinny.co.nz for eligible plans and T's and C's. Get the skinny.
5: Happy, oh.
6: When Matt and Rima first came to Elite Bathroomware, they knew exactly what they were looking for.
7: Modern nostalgia!
6: So the Elite team went to work, blending a little bit of then and a whole lot of now, to create a bathroom that took Matt and Rima's breath away.
7: Breathtaking!
6: Tap into the infinite possibilities at Elite Bathroomware, a reflection of you. Allen's Road, East Tamaki, or elitebathroomware.co.nz.
8: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका। लोटस मेनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी एंड नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश। साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट। बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो। फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th November. T's and C's apply.

0: जय भैया प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स बजट गाने
1: मार्च 2027 एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी
2: रुजबी टिकट्स बुक हो गए
3: तो फिर देर किस बात की बाली बुला रहा
2: सनसेट बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी
3: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन
2: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी
4: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड
5: हेलो एवरीबॉडी
1: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा
6: थोड़ा घूमे आओ अच्छा लगेगा आपको मन बहल जाएगा आपका भी
1: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्वे ओनली ऑन हम
7: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना
8: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
9: Award goes to Indelible Homes.
8: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
10: Kahani of Indelible Homes.
11: With unmissable deals and huge reductions on the rest of the store, the savings are just too good to miss this weekend at Briscoe's. Shop unmissable deals and huge reductions on the rest of the store. But hurry, end Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
12: Shop fresh deals at New World North Island this week. Get skinless chicken thigh cutlets, $11.99 per kilo. Or avocado, $2 for $2.50. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
13: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
14: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
15: मैं हरीश लोढ़िया आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ मैं आप लोगों को इस समय नहीं बतलाऊंगा कि क्या क्या नया इस धनतेरस और दिवाली के लिए आया है मैं आपको और आपके परिवार को आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और अब तक का सबसे बड़ा और बढ़िया ज्वेलरी कलेक्शन एक बार जरूर देखें। तो मिलते हैं सोना संसार 190 स्ट्रडार रोड माउंट रॉस्किल या 138 ग्रेट साउथ रोड पापाटोईटोई में
16: फ्री गोल्ड कॉइन्स ऑन डायमंड ज्वेलरी सीरियसली माही
17: यस बेबो
16: कैच क्या है
17: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री गोल्ड कॉइन्स साथ ही सिलेक्टेड ज्वेलरी पर डायमंड वैल्यू और मेकिंग चार्जेस में अप टू 40% ऑफ का फायदा उठाओ
16: आई स्टिल कांट बिलीव इट नो कैच
17: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर ईस्ट ऑकलैंड
18: PNC Supply.
19: Bollywood के सबसे बड़े हिट गाने
2: कभी भी कहीं भी
20: Yo.
2: Radio Pub.

0: बॉलीवुड के हिट तो हम बजाते रहते हैं एंड बॉलीवुड से जुड़ी हुई एक जुड़ा हुआ एक सवाल हमने आपसे किया था। हमने एक एक्टर के कुछ स्क्रीन नेम्स, फिल्म में जो किरदार उन्होंने निभाया है उस किरदार के नामों को हमने लिस्ट आपको दिया है, आपको बताना था कि किस एक्टर के बारे में हम बातें कर रहे हैं। तो दोबारा वो लिस्ट आपके साथ में हम शेयर करते हैं। विश्वनाथ इनका नाम था, 1996 में एक मूवी आई थी। फिर 1996 में एक और एक बढ़िया मूवी आई थी जिसमें इनका नाम था जोसेफ ब्रगांजा, एक बहुत ही सेंसिटिव लविंग डेफ म्यूट फादर का रोल इन्होंने निभाया था। अब तक 56 आई थी 2004 में, जिसमें इंस्पेक्टर साधु अगाशे का रोल इन्होंने किया था। तबरेज आलम 2005 में ये कैरेक्टर इन्होंने निभाया। एंड उदय शेट्टी, दैट शुड डू इट फॉर यू। ये थे स्क्रीन नेम्स ऑफ एन एक्टर जो अभी हाल ही में पिछले ही सप्ताह इनका विषय हुआ है, और इनका नाम आपको हमारे पास भेजना है 5599 पर।
1: You're listening to Chikash.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: लेडीज एंड जेंटलमैन
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं

0: Sandy and Rizvi on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
4: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
5: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
6: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
7: अब हमारा क्या होगा?
8: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना,
6: तो क्या करें?
9: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
10: What could I be? A teacher? A scientist? A builder? But first I need a chance. A chance to feel safe, to learn, to believe in myself. That's why Barnardos is asking you to invest in children. Because when you invest in a child today, you can help them build a future full of possibilities. Invest in children at investinchildren.nz. Because the returns last a lifetime.
11: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका। लोटस मेनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी इन नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश। साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट। बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो। फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th November। टीज एंड सीज अप्लाई।
0: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
12: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। रेडियो पब।
13: इट्स 5 PM ऑन रेडियो पब और हम पर, मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ। एक और एक घंटे का सफ़र हमारा आपका बाकी रह चुका है और इस सफ़र को भी, इस अगले घंटे को भी हम और भी मज़ेदार बनाना चाहते हैं। सवाल हमने आपसे किया है अबाउट एन एक्टर जिनके स्क्रीन नेम्स और कुछ कैरेक्टर नेम्स हमने आपके साथ में शेयर किए हैं। अन्ना सेठ फिल्म परिंदा, प्रताप नारायण तिलक क्रांति वीर में, विश्वनाथ फिल्म अग्नि साक्षी में, जोसेफ ब्रगेंजा बहुत ही बढ़िया मूवी खामोशी द म्यूजिकल में, एंड हाउ कैन यू फॉरगेट उदय शेट्टी वेलकम में ये नज़र आए थे। अभी हाल ही में इनका देहांत हुआ है एंड थोड़ी देर में कुछ 5 आइकॉनिक रोल्स इनके हम शेयर करेंगे दैट हैज सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड द इंडियन सिनेमा। तो किसके बारे में हम बातें कर रहे हैं, ये अगला गीत सुने राहत फतेह अली खान की आवाज़ में और उस गीत के बाद में हम आपको जवाब देंगे।

0: हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
1: ओके तो हमने सवाल आपसे किया था, स्क्रीन नेम्स आपको हमने बताए थे, उदय शेट्टी द आइकॉनिक रोल एंड देन द अदर रोल्स जो इन्होंने निभाए हैं इसके बारे में भी हमने आपको अलग अलग बातें बताई थी। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रोल्स और जिसको काफ़ी लोग अभी तक याद करते हैं वाज प्रताप नारायण तिलक इन फिल्म क्रांतिवीर। बहुत ही दमदार इसमें डायलॉग्स इन्होंने बोले हैं, एंड आई कांट इमेजिन एनीवन एल्स अपार्ट फ्रॉम नाना पाटेकर रिसाइटिंग दोज डायलॉग्स। परिंदा फिल्म आई थी 1989 में जिसमें एक अंडरवर्ल्ड डॉन का अभिनय इन्होंने किया था, वो भी बहुत ही ब्रेक थ्रू रोल इनका था। अग्निसाक्षी विश्वनाथ में एक अलग ही रोल में इनको देखा गया 1996 में, और फिर उसके बाद 2004 में इंस्पेक्टर साधु आगाशे अब तक छप्पन, 2004 में ये मूवी आई थी, एंड देन ऑफकोर्स वेलकम में इन्होंने एक अलग ही रोल में अपना अभिनय किया है एस उदय शेट्टी। इनकी एक शायरी है जो गाने में तब्दील की गई है, और ये फिल्म वजूद में इन्होंने गाया भी है या फिर अपनी आवाज़ दी है 1998 में अनु मलिक के साथ में नाना पाटेकर के पास। इसकी थोड़ी सी झलकी हम आपके लिए पेश करते हैं एज अ ट्रिब्यूट टू द ग्रेट द लेट नाना पाटेकर।
2: कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, आंखों में तुम, यादों में तुम, सांसों में तुम, आहों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में, मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम, जाऊं कहीं देखूं कहीं, तुम हो वहां, तुम हो मैं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन।
3: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याल दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा आम शक्ल ना हो।

0: मेरे साथ तो उन्होंने गाया भी था.
1: Shirley Setia Unfiltered. Catch the full conversation
2: on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
3: Hey ChatGPT, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
4: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ.
3: बढ़िया है. अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए. और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
4: इंटरेस्टिंग. और कुछ?
3: बस इतना ही.
4: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा.
2: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 एफएम और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश. फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु गंडोला, a household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune.
5: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते.
6: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
7: अब हमारा क्या होगा?
8: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना
6: तो क्या करें?
9: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.
10: Do 8 Sudokus. Save 3 people's lives. Count the holes in a ceiling tile. Or just count the edges and then multiply it. 2 chapters of an audiobook about stoicism. Help create life-saving products. Watch a round of darts. Take a small nap.
11: These are some of the things you can achieve in one blood or plasma donation at your local NZ Blood Donor Centre or mobile drive. Visit nzblood.co.nz to book your blood or plasma donation appointment.
12: This weekend's to-do list is filling up fast. Kids' activities, visiting grandparents. But Woolworths takes going shopping off the list with delivery right to my door. I can even sit down before it arrives. That's my kind of Woolies.
13: With unmissable deals and huge reductions on the rest of the store, the savings are just too good to miss this weekend at Briscoe's. Shop unmissable deals and huge reductions on the rest of the store. But hurry, end Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
14: It's New Zealand Wool Month, so don't miss sheepishly good deals on wool carpet at Flooring Extra. Shop the wool sale now and save on a range of luxurious New Zealand wool carpet. Warm, durable and beautifully sustainable. Plus, you can enjoy 36 months interest-free. So discover the comfort and style of wool that suits your space and budget. Visit your local Flooring Extra showroom today for expert advice you can rely on. TC's fees and credit criteria apply.
15: Flooring Extra. Adore your floor.
16: It's All Go at Weber Store. The four-day spring sale is on. We're Auckland's only Weber Store, a world-class barbecue store unlike anything previously seen in New Zealand, where we exclusively showcase the complete Weber barbecue range with over 50 models on display. Gas to electric, wood pellet to charcoal, we've got the lot. New models, new colours, new capabilities and features with great savings to be had. Get summer ready with our big spring sale, Weber Store, 86 Lun Ave, Mount Wellington.

0: Yo.
1: Big Radio Pub.
2: Okay, 22 minutes ho chuke hain, 5 bajkar 22 after 5, and now you have another chance of getting into the draw jahan par Festival of Fortune 2026 ke tahat hum aapko dena chahte hain $5,000 worth of prizes, and aaj ke liye teesra competition aapke liye hum jari kar rahe hain, NZPMI, jahan par aapko apni property ka true sale value मालूम होगा। अगर आपको पता लगाना है कि आपकी प्रॉपर्टी कितने की वर्थ करती है, कितने पैसे आप बना सकते हैं, गेट इन टच विथ NZPMI। यू कैन कॉल 0800-4NZPMI या फिर आप वेबसाइट विजिट करें www.nzpmi.co.nz, और इनकी ओर से आपको हम देना चाहते हैं $1,000 ऑफ माइटर 10 वाउचर्स, शॉपिंग वाउचर। माइटर 10 में आप जब घुसते हैं तो हम जानते हैं आपको मन करता है कि बस चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन यू आर लिमिटेड बाय द अमाउंट ऑफ डॉलर्स इन योर पॉकेट। लेकिन ये लिमिटेशन हम इंक्रीज करना चाहते हैं टू $1,000। $1,000 वर्थ ऑफ माइटर 10 वाउचर हम आपको देंगे थैंक्स टू NZPMI। अभी आप क्या करें, NZPMI लिखे, स्पेस आपका नाम, मालूम है ना आपका नाम, राइट, ये लिखकर भेजे 5599 पर। जल्दी 8 मिनटों का समय हम आपको प्रदान कर रहे हैं। NZPMI लिखे, स्पेस अपना नाम लिखे, एंड सेंड इट टू 5599, एंड यू विल गेट इनटू द ड्रॉ जहां पर फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून के तहत आप जीत सकते हैं $1,000 वर्थ ऑफ माइटर 10 शॉपिंग वाउचर। सिर्फ एक ही विजेता रहेगा इस वाउचर के लिए, थैंक्स टू NZPMI।

4-5 मिनट का समय आपको हम और दे रहे हैं हमारे दिवाली प्रमोशन के लिए, फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून, जिसमें अब की बार के लिए आपको हम देना चाहते हैं मौका टू गेट इनटू द ड्रॉ टू विन $1,000 वर्थ ऑफ माइटर 10 वाउचर्स। एंड NZPMI की ओर से ये वाउचर हम किसी एक लकी विजेता को देना चाहते हैं। बस आपको इतना ही करना है, NZPMI स्पेस अपना नाम लिखकर भेजिए हमारे पास 5599 पर। रेखाबेन नरसई, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। राजेश जी हैं, अंतरप्रीत, सकीना, आपका मैसेज हमें मिला है, थैंक यू सो मच। नवी है और देवांशी, आपका भी पहले हमारे पास मैसेज आया हुआ था। भाविया है एंड डीना, आपको हम शामिल कर रहे हैं इस अगले गीत में। विथ साहिल, आपको भी हम इस अगले गीत में शामिल कर रहे हैं। NZPMI लिखकर भेजिए 5599 पर विथ योर नेम, NZPMI स्पेस आपका नाम, एंड सेंड इट टू 5599। स्टैंडर्ड कैरियर चार्जेस अप्लाई।

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: Put your head to Gandhi.
2: Driving you home.
3: Drive Show with Sandy and Rusby.
4: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
5: ये गलत बोल दिया यार.
4: और पहनता भी नहीं है उसको.
5: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
4: इंटरेस्ट
6: ब्रांड हो गया अभी वो.
5: अभी ब्रांड हो गया ना.
4: रुस्बे के बाल लगे उस.
3: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manuku and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manuku and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura J.Crew.
7: You know a restaurant's good when you can't get a table for 3 weeks. Just like it's a great sign if a specialist is booked till next month. And if a builder can't fit you in till the summer, you know it's probably worth the wait. So when we tell you that Diocesan School for Girls is generally booked 2 years ahead, that should tell you everything you need to know. So if you're thinking about what's next for your daughter, join us at our open day on Thursday, the 22nd of October from 9 till 11 a.m. Register at diocesan.school.nz.
8: A lot of injuries happen on the weekend. So if you're out and about, or just out in the backyard, have a and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
9: Now there's a better way to a new phone with Spark Upgrader. Combine our huge phone deals with great trade-in savings, plus look out for exclusive offers just for you. See what you could save on a new phone at spark.co.nz/upgrader. Available interest-free, credit criteria and terms apply.
10: Diwali aa rahi hai aur fortune la raha hai aapke liye jeetne ka mauka. Lotus Manukau, Mount Rothkill ya Botany and Namaste Indian Supermarket se koi bhi 2 fortune ya simply products khareediye aur jeetiye $501 का ट्रॉली डैश. साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट. बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो. फॉर्चून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th November. टीज एंड सीज अप्लाई.
11: मैं हूँ हरीश लोडिया. दिवाली की धूम एट सोना संसार. नया स्टॉक्स ऑफ 22 कैरेट ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी की स्टॉक्स आ गया है. सिल्वर स्टॉक्स और सोने और चांदी की बिस्किट्स आ गया है. लक्ष्मी गणेश और प्योर चांदी के मूर्तियाँ वो भी आ गई है. डायमंड ज्वेलरी इंक्लूडिंग न्यू अराइवल्स ऑल एट हाफ प्राइस. सोना संसार 190 स्टोरार्ड रोड माउंट रॉस्किल या फिर 138 ग्रेट साउथ रोड पेपरटोए कॉर्नर ऑफ ईस्ट तमाकी एंड ग्रेट साउथ रोड. हमारा फोन नंबर 629-3333. फॉर स्पेशल डील्स विजिट आवर वेबसाइट sonasansar.co.nz.
12: न्यूजीलैंड के रीसेंट फ्लड्स ने काफी डैमेज किया है. फोकस किचन सारे न्यूजीलैंडर्स की तरह इन विक्टिम्स के साथ खड़े हैं एंड आर हेल्पिंग देम गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ बाय हेल्पिंग देम आउट विद देयर किचन कैबिनेट्स. फोकस किचन प्रोवाइड कर रहे हैं अ वेरी स्पेशल प्राइस फॉर पीपल विद फ्लड डैमेज किचन्स. कॉन्टैक्ट फोकस किचन ऑन 09281-3050, यूनिट के 33 वॉम्सली रोड, ओटाहू. फॉर इन्फो एंड डिजाइन आइडियाज विजिट focuskitchens.co.nz.

रेडियो पब। रेडियो पब में मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ। समय भागता ही चला जा रहा है एंड गेम जो हो रहा है आईडीसी के तहत फिजी में बिटवीन रेवा एंड नावा, इट हैज़ द फुल टाइम हैज़ विशल हैज़ बीन ब्लोन एंड दोनों टीमें अभी भी नील ओल पर रही है। सो द मैच हैज़ गॉन इनटू एक्स्ट्रा टाइम। तो इस पर अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। कीप हमिंग, कीप अ टैब ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स जहाँ पर अपडेट्स हम यहाँ पर नहीं भी रहेंगे वहाँ पर अपडेट्स डालते रहेंगे। इसके अलावा दिवाली के लिए आप तो जानते हैं कि ढेर सारी प्राइजेस हमने आपके लिए बटोर कर इकट्ठा करके लाए हैं। इसके अलावा एक बहुत ही अनोखा सा एक्सपीरियंस हम क्रिएट कर रहे हैं फॉर यू दिस दिवाली जहाँ पर द टाइमलेस स्टोरी ऑफ रामायण विथ हम आप एंजॉय करने वाले हैं। सोमवार से वी आर ब्रिंगिंग यू रामायण एक गाथा। ये एक स्पेशली प्रोड्यूस्ड सीरीज़ है, 1 से 2 मिनट का एपिक स्टोरी टेलिंग सेगमेंट्स हम आपके लिए लाएंगे, प्रेजेंटेड अक्रॉस डिफरेंट टाइम्स थ्रू आउट द डे। दे आर शॉर्ट बट पावरफुल स्टोरीज एंड आर डिजाइन टू ब्रिंग द स्पिरिट वैल्यूज एंड टाइमलेस विजडम ऑफ रामायण इन टू योर एवरी डे लिसनिंग और आपको डिविनिटी का एहसास हम करवाने वाले हैं जस्ट बिफोर दिवाली। तो जुड़ जाए हमारे साथ में मंडे से हम ये शॉर्ट स्टोरी टेलिंग सेगमेंट्स फॉर रामायण एक गाथा आपके लिए स्पेशली आपके लिए हम इस काम को कर रहे हैं। इस दिवाली में आप सेलिब्रेट करें द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स विद द स्टोरीज दैट हैव लिव्ड फॉर जनरेशंस। रामायण एक गाथा ओनली ऑन हम।

0: अनुराग रोमी, अमरभा एंड वरुण, साथ में मधुमती की आवाज़ आपके लिए हम शामिल कर रहे थे। समय हुआ है कि हम यहाँ से निकले और दोबारा आपसे हम मिलेंगे कल शाम 6 पर विद संडे नाइट मेलोडीज। तब तक के लिए आप अपना भरपूर ख्याल रखें। गो द ऑल ब्लैक्स फॉर टू नाइट्स ब्लडी स्लो फर्स्ट मैच बिटवीन द वॉलबीज एंड दी ऑल ब्लैक्स, जो आज 7:05 PM पर होने के है। एंड इसके भी अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। तो कीप फॉलोइंग अस ऑन हम FM, या फिर आप मेरा पर्सनल पेज भी फॉलो कर सकते हैं, जिकाश प्रसाद ऑन हम, या फिर इन सिंक विद जिक्स इन ऑन इंस्टा। मिलते हैं कल शाम 6 पर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें एंड हैव अ ग्रेट सैटरडे नाइट एंड एन ऑसम संडे। नमस्कार।
1: You're listening to Chikash.

0: Bollywood ka asli blockbuster.
1: Pure sheher pe kabza hoga, raj hoga.
0: Playing Bollywood's biggest hits. Hum.
2: Mental health is part of our overall health. जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप overwhelmed हैं या emotions manage करने में struggle कर रहे हैं, तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है। Asian Family Services आपके कल्चर को समझते हैं और professional, confidential और free emotional support देते हैं। Call Asian Helpline Free on 0800-862-342. अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है, तो 111 पर कॉल करें।
3: The ultimate pro iPhone, iPhone 18 Pro. With a big leap in battery life, new 48 megapixel fusion main camera with variable aperture for more creative control, and four gorgeous colors. Be the first to unbox it with a great deal at Spark. Plus, save even more with trade-in. Do more with iPhone 18 Pro on an eligible pay monthly mobile plan with Spark. Order online or in-store. Spark terms and credit criteria apply. Delivery times may vary.
4: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका। लोटस मेनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी इन नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश। साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट। बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो। फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th November. टीज एंड सीज अप्लाई।
5: बिग बाजार में बिगेस्ट रेंज ऑफ पूजा घर मिल रहे हैं। प्योर मार्बल मूर्तिज, कॉपर मूर्तिज, गन मेटल मूर्तिज, देवी देवताओं के वस्त्र, सभी तरह के हार एंड एक्सटेंसिव रेंज ऑफ पूजा आइटम्स, बिग रेंज ऑफ कंसोल टेबल्स, मिरर्स, कर्टन्स, सोफा कवर्स, बीना एंड लाहौर ब्रांड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल है। बिग बाजार 302 ग्रेट साउथ रोड, पापाटोईटोई, योर वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन दिस नवरात्रि।
6: फ्री गोल्ड कॉइन्स ऑन डायमंड ज्वेलरी, सीरियसली माही?
7: यस बेबो।
6: कैच क्या है?
7: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री गोल्ड कॉइन्स, साथ ही सिलेक्टेड ज्वेलरी पर डायमंड वैल्यू और मेकिंग चार्जेस में अप टू 40% ऑफ का फायदा उठाओ।
6: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
7: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, बॉटनी टाउन सेंटर, ईस्ट ऑकलैंड।
8: PNC Supply.
0: Hum, time check.
9: Brought to you by Maan Tires. For all kinds of tires and mechanical services, open 7 days. Call Maan Tires on 0800-00010.
0: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
10: Good evening, I'm Torben with the latest at 6. New Zealand First is promising a big boost for working for families if re-elected. It wants to more than double the in-work tax credit to $120 a week and make it permanent, at an estimated cost of over $500 million a year. Leader Winston Peters also wants to increase the minimum wage at the same rate of inflation every year.
11: We take the view of Lee Kuan Yew and people like that who've made Singapore the brilliant economy it is by driving wages up, but ensuring that they're accompanied by a thing called productivity.
10: Police are remaining tight-lipped about a violent incident in South Auckland that's injured two people. Hatuhone St John says it sent crews to Harwell Place in Mangere about 12:30 and took two patients to hospital. One was in a critical condition and another in a moderate condition. Police say officers remain in the Mangere area and are continuing to piece together what happened. And Ukraine's president has responded with dismay to President Trump's announcement the US will buy Russian diesel. Mr. Trump says Vladimir Putin has agreed to supply 800,000 tons to US and global markets over the next 2 months. He says another 4 million tons will follow after that, lauding it as a victory for American farmers and truckers. However, Volodymyr Zelensky says the deal will mean more money for Russia to inflict suffering on his country. To sport, and the All Blacks are set for a big defensive performance against the Wallabies when the Bledisloe Cup clash kicks off in just over an hour. Captain Cody Taylor knows what's needed.
12: We're going to have to be really sound on defence to take away what they're trying to create. That's a great challenge, you know, that's probably one area that we looked at that we need to be better at.
10: Elsewhere, Taranaki have thrashed North Harbour 50 points to 31 in their NPC quarterfinal in Albany, and Wellington's women beat Northland 39 to 15 in the final of the Farrah Palmer Cup Championship.

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: अरे तुम का बताई भैया हमरा हाल का है।
2: बताए दे।
1: निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

जो हमने जाग जाग की ऐसी भागम भाग कि हम कभी आ गए कभी हुआ गए कभी आ गए कभी हुआ गए कभी इधर भगे फिर तुमने दिया ये फान तो आई हमरी जान में जान तो आई हमरी जान।

पिघलाती है, बल खाती है, तन का चंदन वो छलक छलक झलकाती है, वो नैन द्वार से तन में आके मन में ज्वाला जगाती है, वो चंद्रमुखी है, वो मृगनैनी है, वो चंद्रमुखी है, वो मृगनैनी है, वो रूपवती है।

0: breakfast show with VJ and Pooja.
1: बुरी planning से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very. That is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
0: Weekdays, 6 to 10 a.m.
5: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800-634-234. TCs and lending criteria apply.
6: With unmissable deals and huge reductions on the rest of the store, the savings are just too good to miss this weekend at Briscoe's. Shop unmissable deals and huge reductions on the rest of the store. But hurry, end Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
7: Kick breast cancer to the curb and volunteer for the Pink Ribbon Street Appeal this October. Pick a two-hour shift at a time and location that suits you to help the thousands of women diagnosed with breast cancer. Sign up at pinkribbonvolunteer.org.nz.
8: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex and this is my guest, Sarah.
9: What do you make in kebab ko special, Chef Alex?
8: Perfect blend of spices, tender meat and fresh vegetables. Har kebab banta hai with love and passion.
9: Wow, these kebabs are amazing. Spices ekdam right and meat is so juicy.
8: Yeh hai Amma's Kebabs promise, delivering happiness bite by bite. Amma's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
9: 100% authentic and pure as mother's love.
10: मैं हरीश लोडिया आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ. मैं आप लोगों को इस समय नहीं बतलाऊंगा कि क्या क्या नया इस धनतेरस और दिवाली के लिए आया है. मैं आपको और आपके परिवार को आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और अब तक का सबसे बड़ा और बढ़िया ज्वेलरी कलेक्शन एक बार जरूर देखें. तो मिलते हैं सोना संसार 190 स्ट्रडा रोड माउंट रॉस्किल या 138 ग्रेट साउथ रोड पापाटोईटोई में.
11: फ्री गोल्ड कॉइन्स ऑन डायमंड ज्वेलरी, सीरियसली माही?
12: यस बेबो.
11: कैच क्या है?
12: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ. डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री गोल्ड कॉइन्स. साथ ही सिलेक्टेड ज्वेलरी पर डायमंड वैल्यू और मेकिंग चार्जेस में अप टू 40% ऑफ का फायदा उठाओ.
11: आई स्टिल कांट बिलीव इट. No catch.
12: Catches सिर्फ matches में होते हैं बेबो. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds, Botany Town Center, East Auckland.
13: PNC Supply.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800-634-234. TCs and lending criteria apply.
2: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
3: बिग बाजार में बिगेस्ट रेंज ऑफ पूजा घर मिल रहे हैं। प्योर मार्बल मूर्तिज, कॉपर मूर्तिज, गन मेटल मूर्तिज, देवी देवताओं के वस्त्र, सभी तरह के हार एंड एक्सटेंसिव रेंज ऑफ पूजा आइटम्स, बिग रेंज ऑफ कंसोल टेबल्स, मिरर्स, कर्टन्स, सोफा कवर्स, बीना एंड लाहौर ब्रांड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल है। बिग बाजार 302 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोय टोय, योर वन स्टॉप शॉपिंग।

0: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
1: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
0: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
1: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
0: बस इतना ही।
1: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
2: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune.

0: मेरे को देख के हंस रही थी ना, अच्छा लगा ना मैं?
1: तू क्यों अच्छा लगेगा?
0: तो फिर मेरे को देख के हंस क्यों रही थी?
1: मैं तुझे देख नहीं रही थी, इसलिए तू कौरा बौरा हो रहा था ना।

0: the DJ Mix.
1: DJ, turn it up.
0: Ow. March 2027. Ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
2: Rusbi, tickets book ho gaye.
0: To phir der kis baat ki? Bali bula raha.
2: Sunset, beach club aur thoda sa sukoon bhi.
0: Lekin kahani yahi khatam nahi hoti.
3: Fatiha.
0: Bangkok mein hoga hamara asli tashan.
2: Tuk tuk street food aur raaton ki rangeen duniya bhi.
4: Ek baar to jaana hi chahiye Thailand.
5: Hello everybody.
0: Do shehar, ek safar aur yaadein jo rahengi hamesha.
6: Thoda ghoome aao, acha lagega aapko, man behal jayega aapka bhi.
0: Text drive on 5599 for the all inclusive tour price. Kyunki ye kahani ab aapke saath likhi jayegi. Bali and Bangkok getaway with Sandy and Rusbe only on Hum.
7: Discover the magic at Go Bananas Childcare, jahan aapke bacche seekhenge in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ye hamesha aapke paas hain. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. To jaldi join karo aur enjoy karo special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
8: रुजबे 2026 में ना बहुत काम कर लिया है अब तो ब्रेक बनता है
0: बिल्कुल तो लेते हैं एक लग्जरियस हॉलिडे ब्रेक बाली और बैंकॉक
8: और आप भी चलिए सन टूर्स के साथ ईस्टर 2027 में
0: बाली 6 दिन और बैंकॉक 5 दिन कंप्लीट लग्जरियस हॉलिडे पैकेज बुक कीजिए टिल दिवाली और पाइए फ्री 2 नाइट्स 3 डेज सिडनी टू सिडनी क्रूज पैकेज
8: 2027 ईस्टर को बनाइए एक्स्ट्रा स्पेशल बाली बैंकॉक और फ्री क्रूज
0: बुक नाउ विद सन टूर्स
8: कॉल करें 0800 478686
9: Save big at Rebel and get the kids sorted for

0: 100% ऑथेंटिक और माँ के प्यार जितना शुद्ध। आज ही करें ट्राई, आपके नजदीकी स्टोर में उपलब्ध है। स्वाद भी, सेहत भी।
1: Party up, no, no, no, no, no. This is DJ Mix.

0: Bollywood.
1: पूछो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: Hey ChatGPT, दिवाली आने वाली है. ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
3: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ.

0: Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं उसको.
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया
2: अभी. अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Poke Koi, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Poke Koi, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J Crew.
4: Free gold coins on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
5: Yes, Bebo.
4: Catch kya hai?
5: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free gold coins. Saath hi selected jewelry par diamond value aur making charges mein up to 40% off ka fayda uthao.
4: I still can't believe it. No catch.
5: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds, Botany Town Center, East Auckland.
6: PNC Supply.

उन बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: वो इंडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
2: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
3: And award goes to Indelible Homes.
2: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
4: Kahani of Indelible Homes.
5: मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ। जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप ओवरवेल्ड हैं या इमोशंस मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है। एशियन फैमिली सर्विसेज आपके कल्चर को समझते हैं और प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियल और फ्री इमोशनल सपोर्ट देते हैं। कॉल एशियन हेल्पलाइन फ्री ऑन 0800-862-342। अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें।
6: The DJ Mix, only on Hum.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: रूस में 2026 में ना बहुत काम कर लिया है, अब तो ब्रेक बनता है.
2: बिल्कुल, तो लेते हैं एक लग्जरियस हॉलिडे ब्रेक, बाली और बैंकॉक.
1: और आप भी चलिए सन टूर्स के साथ ईस्टर 2027 में.
2: बाली 6 दिन और बैंकॉक 5 दिन, कंप्लीट लग्जरियस हॉलिडे पैकेज. बुक कीजिए टिल दिवाली और पाइए फ्री 2 nights 3 days सिडनी टू सिडनी क्रूज पैकेज.
1: 2027 ईस्टर को बनाइए एक्स्ट्रा स्पेशल, बाली बैंकॉक और फ्री क्रूज.
2: बुक नाउ विद सन टूर्स.
1: कॉल करें 0800-478-686.
3: मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ. जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है. अगर आप ओवरवेल्ड हैं या इमोशंस मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है. एशियन फैमिली सर्विसेज आपके कल्चर को समझते हैं और प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियल और फ्री इमोशनल सपोर्ट देते हैं. कॉल एशियन हेल्पलाइन फ्री ऑन 0800-862-342. अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें.
4: Now when you're in the loop with ANZ and take public transport, money loops back. Get 50% cash back on Wednesdays and weekends in October when you tag on and off AT public transport with a personal ANZ Visa card. Eligibility terms and conditions, fees and exclusions apply.
5: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply.
6: Free gold coins on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
7: Yes, Bebo.
6: Catch kya hai?
7: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free gold coins. Saath hi, selected jewelry par diamond value aur making charges mein up to 40% off ka fayda uthao.
6: I still can't believe it. No catch.
7: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds. Botany Town Center, East Auckland.
8: DNC supply.
9: Bollywood ka asli blockbuster.
10: Pure sheher pe kabza hoga, raj hoga.
9: Playing Bollywood's biggest hits.

0: Oh, myself, Pintu.
1: रैम्बो का नाम सुना? टर्मिनेटर का? और सलमान भाई? इन तीनों को ना एक मिक्सी में डाल, तीन चार बार घुमा, घूम घूम घूम, जो ग्लास भर के मिल्कशेक निकलता है ना,

0: to Big Boss.
1: I
0: right?
1: went yeah. there once, yeah.
2: That was the for most, Nikamma, na?
1: For Nikamma, ah. yes.
2: So, what do you think yeah. about Salman Khan?
1: I covered Salman sir ke gaane ka cover kiya tha. Mujhe unhone kaha tha ki tumko gaana gaana hai ek. To I said, theek hai. Maine bahut politely aise unko pucha tha ki aap please gaayenge mere saath. To unhone gaya bhi tha.
3: Shirley Setia, Unfiltered. Catch the full conversation on Rova, Spotify, or anywhere you get your podcast.
4: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
5: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी।

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Playing Bollywood's biggest hits.

0: Flight on Hum.
1: Hey ChatGPT, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी बन जाए?
2: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
1: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
2: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
1: बस इतना ही।
2: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
3: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कंडोला, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एंड फॉर्चून, ब्रिंग होम द फॉर्चून।
4: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
5: बिजी सुबह हो या शाम का जल्दी का खाना, अम्मास फूड्स मल्टीग्रेन डोसा बैटर बनाएं। हर मील हेल्दी और डिलिशियस, हाई प्रोटीन, रिच इन फाइबर और स्वाद से भरपूर। ये है हर घर का बेस्ट चॉइस, अम्मास फूड्स मल्टीग्रेन डोसा बैटर, 100% ऑथेंटिक और माँ के प्यार जितना शुद्ध। आज ही करें ट्राई, आपके नजदीकी स्टोर में उपलब्ध है। स्वाद भी, सेहत भी।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टॉप प्राइस।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: तेरे किट धूम तेरे किट धूम तेरे किट

0: स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: डिस्कवर द मैजिक एट गो बनाना स्टाइल केयर, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे इन अ फन वे विद मल्टीपल ब्रांचेस अक्रॉस ऑकलैंड एंड हैमिल्टन। ये हमेशा आपके पास है। गो बनाना स्टाइल केयर 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. So, jaldi join karo aur enjoy karo special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
3: विदेश से लोगों को यहाँ काम करने के लिए अब एम्प्लॉयर अक्रेडिटेशन कंपलसरी हो गया है। इमिग्रेशन के नए रूल्स और परेशानियों से बचने में आपको मदद करेंगे ओकलैंड साउथ इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के अतीश नारायण। अपॉइंटमेंट्स के लिए फोन करें 0800-168-472 पर। अतीश नारायण और उनकी टीम आफ्टर आवर्स और वीकेंड्स पर भी अवेलेबल रहते हैं। फॉर मोर डिटेल्स विजिट देयर वेबसाइट asic.co.nz।
4: न्यूजीलैंड के रीसेंट फ्लड्स ने काफी डैमेज किया है। फोकस किचन सारे न्यूजीलैंडर्स की तरह इन विक्टिम्स के साथ खड़े हैं एंड आर हेल्पिंग देम गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ बाय हेल्पिंग देम आउट विद देयर किचन कैबिनेट्स। फोकस किचन प्रोवाइड कर रहे हैं अ वेरी स्पेशल प्राइस फॉर पीपल विद फ्लड डैमेज किचन्स। कॉन्टैक्ट फोकस किचन ऑन 09281-3050, यूनिट के 33 वॉम्सली रोड, ओटाहूहू। फॉर इन्फो एंड डिजाइन आइडियाज विजिट focuskitchens.co.nz।

0: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
1: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
0: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
1: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
0: बस इतना ही।
1: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
2: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60 months इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune.
3: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के।
4: द बिग सेल इज ऑन नाउ एट बेड्स आर अस विद अमेजिंग डील्स ऑन सिलेक्टेड स्लीपी हेड बेड्स लाइक 60% ऑफ स्विस टेक प्रिसिशन क्वीन साइज नाउ 3499। द बिग सेल एट बेड्स आर अस मेनिकाओ एंड पुकेकोहे वेयर ड्रीम्स बिगिन।
5: It's New Zealand Wool Month, so don't miss sheepishly good deals on wool carpet at Flooring Extra. Shop the wool sale now and save on a range of luxurious New Zealand wool carpet. Warm, durable and beautifully sustainable. Plus, you can enjoy 36 months interest-free. So discover the comfort and style of wool that suits your space and budget. Visit your local Flooring Extra showroom today for expert advice you can rely on. TC's fees and credit criteria apply.
6: Flooring Extra. Adore your floor.
7: Playing Bollywood's biggest hits.
8: Night Flying.

0: Bollywood.
1: World's best हमारी कोई branch नहीं है.
2: चल चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए.

0: driving you home.
1: Drive show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं उसको.
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया
3: अभी. ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J2.
5: Mental health is part of our overall health. जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है. अगर आप overwhelmed हैं या emotions मैनेज करने में struggle कर रहे हैं, तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है. Asian Family Services आपके कल्चर को समझते हैं और professional, confidential और free emotional support देते हैं. Call Asian Helpline Free on 0800-862-342. अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है, तो 111 पर कॉल करें.

0: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: Non-stop Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो. जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो. हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याल दिल. लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ। जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप ओवरवेल्ड हैं या इमोशंस मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है। एशियन फैमिली सर्विसेज आपके कल्चर को समझते हैं और प्रोफेशनल कॉन्फिडेंशियल और फ्री इमोशनल सपोर्ट देते हैं। कॉल एशियन हेल्पलाइन फ्री ऑन 0800-862-342। अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें।
2: फ्री गोल्ड कॉइन्स ऑन डायमंड ज्वेलरी? सीरियसली माही?
3: यस बेबो।
2: कैच क्या है?
3: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री गोल्ड कॉइन्स, साथ ही सिलेक्टेड ज्वेलरी पर डायमंड वैल्यू और मेकिंग चार्जेस में अप टू 40% ऑफ का फायदा उठाओ।
2: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
3: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, बॉटनी टाउन सेंटर, ईस्ट ऑकलैंड।
4: DNC Supply.

शाम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। और गहराई में जाएं और ध्यान दें तो एक नया अर्थ सामने आता है। रंग भी शाम है और पिया भी शाम है, तो शाम रंग में पिया मोरी रम दे चुनरिया। शब्दों की ओर ध्यान दें।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

नमस्कार सलाम सत श्री अकाल अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑकलैंड. स्वागत है आपका यहाँ हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स पे. मैं रक्षा आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी हूँ और आपका और मेरा जो सफ़रनामा है वो चलेगा अगले 6 घंटे. करेंगे हम बहुत सारी बातें और प्यारे प्यारे गाने आपके लिए बैक टू बैक.

सो प्यारी प्यारी बातें और एक से एक बेहतरीन गाने लेकर तो मैं आपके लिए आज के इस ब्रेकफास्ट शो में आती रहूंगी, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है कि आज मैंने एक बहुत, आज नहीं एक्चुअली, एक बहुत अच्छी आर्टिकल पे मैं रिसर्च करके आई हूँ इस सप्ताह, जहाँ पर बात की गई है कि हाउ आवर मॉर्निंग्स आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये कोई जेनेरिक बात नहीं है कि हाँ सुबह उठोगे ज़्यादा ताज़ी हवा मिलेगी, न्यूजीलैंड में हवा ताज़ी है, बट देर आर अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स जो मैंने भी फॉलो करने थोड़े शुरू किए, बिकॉज आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। ठीक है, मैं ब्रेकफास्ट शो यहाँ पर करने आती हूँ आपके लिए, लेकिन मैं नाइट कैफ़े एंड ऑल शोज़ में भी बहुत ज़्यादा आया करती थी। सो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू यू नो एक्सप्लोर द अदर पार्ट ऑफ द जर्नी, अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, अदर कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम, बींग ट्राइंग टू बी लाइक नॉट अ मॉर्निंग जो एकदम 4 बजे उठ के योगा करता, नॉट दैट, बट यस ट्राइंग टू सेट द रिदम ऑफ द डे by fixing my mornings। तो इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ी हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी भी help में आ सकती है, वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी थोड़ी ही देर में। Stay tuned।

सो जैसा कि मैंने बोला था कि यहाँ पे बात करेंगे कि सुबह मॉर्निंग्स हमारी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती है, तो जो सुबह होती है ना कि वो हमारा बेसिकली फाउंडेशन लाई करता है। जैसे कहते हैं ना, बेस अगर सॉलिड हो, कंक्रीट हो, तो ऊपर जो भी बिल्ड करते हो, मतलब पूरे दिन में आप जो भी करते हो या उसके ऊपर जो भी आपकी प्लानिंग हो, वो सारी ना सॉलिड होती जाती है। तो सिंपल मॉर्निंग जहाँ पर आप थोड़ा जल्दी उठते हो और आप बिना रश किए अपना ब्रेकफास्ट खाते हो, जो आप और मैं जानते हैं कि बहुत बार ब्रेकफास्ट मिस भी हो जाता है और हम काफ़ी रश में ब्रेकफास्ट खाते हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत ही कॉमनली होता है, मोस्टली मेरा ब्रेकफास्ट भी मिस हो जाता है। तो प्लान करना मॉर्निंग को, थोड़ा जल्दी सोना, थोड़ा जल्दी उठना और उस रश से अपने आप को बाहर रखना, आई थिंक ये एक ऐसा स्ट्रगल है जो आज के जनरेशन में हर इंसान इसके थ्रू जा रहा है। अगर आप पेरेंट हैं तब ये स्ट्रगल आपकी और भी बढ़ जाती है। आप सुबह उठ के खुद को ही नहीं तैयार करते, आप अपने पूरे घर को तैयार करते हो, अपने बच्चों को तैयार करते हो, उनका खाना पीना, ब्रेकफास्ट करते करते आपके पास टाइम ही नहीं रहता है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करें और उसके लिए थोड़ा जल्दी सोएं, अपने नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अभी जल्दी सोना इज़ ऑल्सो समथिंग जिसके साथ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो सबसे बड़ा रामबाण इलाज आज के टाइम्स में, आज के जनरेशन में, कि भाई अपना स्क्रीन, अपना फ़ोन जो है उसको ना सोने से एक घंटा पहले अपने हाथ से दूर रखें और कोई भी स्क्रीन को ना देखें। कोई भी ये सब हम जो मीम्स वगैरह सब स्क्रॉल करते रहते हैं, सबसे पहले तो ये बंद कर दें। तो ये सब ऐसी कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी हैं जो मैं आपके लिए बीच बीच में लेकर आती रहूँगी। स्टे ट्यून्ड।

0: रही।
1: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
2: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
3: अब हमारा क्या होगा?
4: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना,
2: तो क्या करें?
5: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
6: My future is still being written. I don't know what I'll be when I grow up, but I know I want the chance to find out. Your investment in children can help me get there. With the right support, I can feel safe, learn, grow, build confidence, and discover what I'm capable of. That's why Barnardos is asking LTRL to invest in children. Invest in children at investinchildren.nz. And invest in me.
7: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
8: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke nazdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
9: मैं हरीश लोढ़िया आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आप लोगों को इस समय नहीं बतलाऊंगा कि क्या क्या नया इस धनतेरस और दिवाली के लिए आया है। मैं आपको और आपके परिवार को आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और अब तक का सबसे बड़ा और बढ़िया ज्वेलरी कलेक्शन एक बार जरूर देखें। तो मिलते हैं सोना संसार 190 स्ट्रडा रोड माउंट रॉस्किल या 138 ग्रेट साउथ रोड पापाटोईटोई में।
10: न्यूजीलैंड के रीसेंट फ्लड्स ने काफी डैमेज किया है। फोकस किचन सारे न्यूजीलैंडर्स की तरह इन विक्टिम्स के साथ खड़े हैं एंड आर हेल्पिंग देम गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ बाय हेल्पिंग देम आउट विद देयर किचन कैबिनेट्स। फोकस किचन प्रोवाइड कर रहे हैं अ वेरी स्पेशल प्राइस फॉर पीपल विद फ्लड डैमेज किचन्स। कॉन्टैक्ट फोकस किचन ऑन 09281-3050, यूनिट के 33 वॉम्सली रोड, ओटाहूहू। फॉर इन्फो एंड डिजाइन आइडियाज विजिट focuskitchens.co.nz।

लाइट और ब्राइट दोनों हम रखेंगे, क्योंकि हम बात करेंगे उन चीजों के बारे में जो कि इंस्टेंटली हमारे मूड को अपलिफ्ट कर देती है, जैसे एक अच्छी कप ऑफ चाय, उस तरीके की कॉफी जिस तरीके की आपको एग्जैक्टली पसंद है, एक सुनहरा सा बॉलीवुड वाला गाना, मैसेज फ्रॉम समवन यू रियली लव और यू आर मिसिंग। पेरेंट्स के लिए बच्चों को बस स्कूल ड्रॉप करके घर आके सुकून में कुछ घंटे बिताना, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच इंस्टेंटली अपलिफ्ट्स योर मूड। और साथ में यहाँ पर भूले नहीं, हम पर आपके लिए हम प्यारे प्यारे गाने लेकर आते रहते हैं, प्यारी प्यारी बातें, लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स जो कि भी आपके मूड को अपलिफ्टेड रखता ही हैं। फिलहाल आप कहाँ से मुझे सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आज आपका क्या प्लान है मुझे बता सकते हैं 5599 पर।

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: So, इस घंटे हम बहुत सारी मोटिवेटिंग बातें कर रहे थे और उसी मोटिवेशन ने मुझे याद आया कि मैंने जो आर्टिकल आपके बारे में आपको मेंशन किया था उसे मैंने पढ़ा था. ऑफकोर्स नॉट एवरी मॉर्निंग इज गोइंग टू बी परफेक्ट. तो आप अपना स्केड्यूल बनाने के चक्कर में कभी कभार इधर उधर ज़रूर स्लिप हो गए. वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड मी इज़ टू कम बैक ऑन ट्रैक, जिसमें भी बड़ी माथा पच्ची करनी पड़ती है लेकिन करना तो पड़ेगा ही. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपना लास्ट वीकेंड बहुत ज़्यादा लेजीनेस में बिताया, विच आई डू नॉट वॉन्ट टू सिट ओवर एंड क्राई, क्योंकि ठीक है रेस्टफुल था मेरे लिए और वो रेस्ट एंड रिकवरी का भी एक टाइम होना चाहिए. तो मैंने लास्ट वीकेंड बहुत टोटल लेज़ी, मैंने अपना कोई काम ढंग से नहीं किया, घर के काम जो लॉन्ड्री एंड ऑल होते हैं कुछ नहीं किया मैंने, सब वीकडेज पे किया. आई वॉज जस्ट टेकिंग लॉन्ग नैप्स एंड आई डिड नॉट एक्सरसाइज, आई डिड नॉट गो आउट, आई वॉज जस्ट बींग लेज़ी, स्लीपिंग इन एंड जस्ट ऑर्डरिंग फूड. तो मुझे देखो ये मुझे लग्जरी भी लगी और मुझे लगा कि बहुत अच्छा रेस्ट एंड ऑल मिला, बट एट द सेम टाइम देयर वाज अ गिल्ट इनसाइड मी कि यार मैं एक रिदम को क्यों नहीं फॉलो कर रही, बिकॉज आई वांट जनरली व्हाट इज़ देयर, मेरा माइंडसेट होता है कि मैं अपने वीकेंड्स को एक्टिव रखना चाहती हूँ इन द सेंस कि आई वॉन्ट टू बी आउट एंड अबाउट, मीट माई फ्रेंड्स, गो फॉर अ वॉक, वॉच द सनलाइट और द सनसेट, आई मीन बी इन द सनलाइट एंड एटलीस्ट ट्राई टू वॉच द सनसेट इफ नॉट द सनराइज. And of course, मैं रेडियो आती हूँ, यहाँ पर शो करती हूँ, मैं आपके साथ इंटरेक्ट करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे. दैट इज़ द बेस्ट थिंग आई डू ओवर ड्यूरिंग माई वीकेंड्स एंड यू नो लाइक अ फ्यू थिंग्स. और जब वो पूरा ही नहीं हुआ तो आई वॉज क्वाइट लाइक क्यों नहीं हो रहा, एंड आई हैड अ फीलिंग कि मैं इस वीकेंड भी सेम करने वाली हूँ. दैट्स वाई आई टुक अ कॉल और मैं अभी इस वीकेंड में वो हर चीज़ कर रही हूँ राइट फ्रॉम सैटरडे मॉर्निंग कि आई डू नॉट एंड अप जस्ट फीलिंग लेज़ी. आई वॉन्ट कि मुझे एक होलसम फीलिंग आए कि मैंने अपना वीकेंड अच्छे से व्यतीत किया, जिसमें मुझे एनर्जेटिक फील हुआ एंड जस्ट शोइंग अप एट प्लेसेस. आई वेंट फॉर अ स्मॉल वॉक, आई वॉज इन द सन येस्टरडे, बहुत अच्छा दिन था कल. तो ये सब चीज़ें मैंने करी एंड आई ट्राई टू रिजॉल्व माई प्रॉब्लम बाई माई ओन सेल्फ, और अब जाके मैं आपके सामने थोड़ा क्रिप कर रही हूँ, लेकिन आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड कि आई पुश माई सेल्फ. तो यही आपका मौका है, अगर आपके साथ भी सेम चल रहा है भूले नहीं, यू हैव टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. तो अपनी जर्नी के साथ कंपेयर ना करें, चुपचाप जहाँ खड़े हैं वहीं से उठें और शुरुआत कर दें आप बस. ऐसी बहुत सारी बातें ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
2: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. 140cc quality lawnmowers, just $249. Cordless leaf blower and battery, just $70. Cordless weed eater and battery, just $70. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
3: With unmissable deals and huge reductions on the rest of the store, the savings are just too good to miss this weekend at Briscoe's. Shop unmissable deals and huge reductions on the rest of the store. But hurry, end Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
4: Hey you with the ears. Your skinny phone plan now has rewards. So, all your scrolling, tapping.
5: Babe, wake up, look at this meme.
4: Ha ha, reacts and thumbs up from dad will actually pay off. Join Skinny and renew 3 times in a row to collect up to 1,000 Everyday Rewards points. Skinny and Everyday Rewards accounts must be linked. See skinny.co.nz for eligible plans and T's and C's. Get the Skinny. Happy, happy, happy,
6: oh. Now when you're in the loop with ANZ and take public transport, money loops back. Get 50% cash back on Wednesdays and weekends in October when you tag on and off AT public transport with a personal ANZ Visa card. Eligibility terms and conditions, fees and exclusions apply.
7: Diwali aa rahi hai aur fortune la raha hai aapke liye jeetne ka mauka. Lotus Manukau, Mount Rosskill ya Botany in Namaste Indian Supermarket se koi bhi 2 fortune ya simply products khareediye aur jeetiye $501 ka trolley dash. Saath mein har hafte 10 winners ko $101 ka in-store credit. Bas entry form bharo, receipt lagao aur entry box mein dal do. Fortune Diwali, be in to win. Ends 15th November. T's and C's apply.
8: Hi, I'm Murray Harris, head of KiwiSaver at Milford. We're delighted to have just won Canstar's KiwiSaver Provider of the Year and Outstanding Value KiwiSaver Scheme Awards for a record 7th year in a row. CanStar recognised us not just for our long-term returns, but also for the support and confidence our members say we provide. And that's another really good reason to choose Milford.
9: Past performance is not a reliable indicator of future performance. Milford Funds Limited is the issuer of the Milford KiwiSaver plan. Please read the product disclosure statement at milfordasset.com.
10: Hey ChatGPT, Diwali aane wali hai. Aisa koi idea hai ki mera diwala bhi na nikle aur Diwali bhi ban jaye?
11: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
10: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
11: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
10: बस इतना ही।
11: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
12: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 एफएम और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, एनजेड पीएमआई, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कंडोला, a household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune.

वेलकम बैक टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. मैं रक्षा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ. जारी है ब्रेकफास्ट शो 104.2 एफएम एज वेल एज रोवा ऐप. इनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हो दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी वक्त. इस घंटे थोड़े वेदर अपडेट्स, थोड़े स्पोर्ट्स अपडेट्स और यहाँ वहाँ की बहुत सारी बातें आपके लिए बैक टू बैक.

0: Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
0: हम playing Bollywood's biggest.

सो मौसम जो है वो कुछ इस प्रकार है कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और आज भी मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 21 डिग्री तक जाने वाला है. मिनिमम टेम्परेचर भी 15 डिग्री रहने वाला है. सो इट लुक्स लाइक अ हॉट वीक टू मी टिल वेंसडे. मतलब तब तक 14-15 मिनिमम एंड 21-22 मैक्सिमम चल रहा है. साथ में धूप और छांव और बारिश सब आज लगी रहेगी. सुबह थोड़ी हल्की फुल्की बारिश, दोपहर को अच्छा सनी आफ्टरनून एंड देन इवनिंग में अगेन इट विल बी क्लाउडी एंड बारिश. एंड लुकिंग एट मंडे आई ऑलरेडी फील लाइक क्राइंग. मतलब प्रिटी मच पूरे दिन ही ऐसे थोड़ा बारिश स्पेसिफिकली सॉरी आफ्टरनून में बारिश, बाकी पूरे दिन क्लाउडी. तो चलो ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ आर मूड मंडे को जो है नज़र आएगा. एंड प्रिटी मच दिस वीक इज़ ऑल्सो लुकिंग क्वाइट लाइक अ रेनी वीक. तो मुझे लगता है काफ़ी मगी वेदर रहने वाला है, विच इज़ अनदर चेंज. एंड यस्टरडे आई वॉज आउट इन द सन एंड इट वॉज सो हॉट. एज मच एज आई लाइक समर, बट कभी कभी जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, तो आई स्टार्ट मिसिंग द विंटर. अब मुझे पता है लोग सोचेंगे यार अक्षय कैसी बातें कर रहे हो, प्लीज़ डोंट टॉक अबाउट विंटर, इट्स सो डिप्रेसिंग. इन न्यूजीलैंड वी लाइक समर, बट यस ऐसा मेरा कहना है. कौन से ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो मेरे साथ सहमत हैं.

तो स्पोर्ट्स में यहाँ पर फुटबॉल में ऑकलैंड सिटी एफसी और वेलिंगटन ओलंपिक जो हैं ये आए आमने सामने कल शनिवार को. दिस वॉज अ डोप मैच, मतलब टक्कर जो थी पूरी चल रही थी. 2-2 जो है ये स्कोर पे गोल्स पे फंसे रहे उसके बाद प्रिवेलिंग 6-7 की आफ्टर द डिसाइडर फिनिशर पेनल्टी वाला गेम जो होता है वो खेला गया और फिर फाइनली ऑकलैंड सिटी एफसी जो है इनको विनर जो है ये करार दिया गया इस चैम्पियनशिप में.

0: playing Bollywood's biggest hits.
1: Put your head to Gandhi.
2: Ladies and gentlemen.
3: Unfiltered with Sandy and Rizvi. Kyunki dunya mein already bahut sare perfect, polished, Instagram-friendly stories hain. Aur unka humse koi lena dena nahi. Yahan kahaniyan hoti hain raw. Emotions hote hain real. Aur conversations hote hain bina mask ke.
4: Raja, mantri, chor, sipahi, sab yahan aate hain.
3: Unfiltered with Sandy and Rizvi. On Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
5: Reliance Ventilation System.
6: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
5: Moisture और ventilation का problem लगता है.
6: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
5: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
7: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for

Sunday Breakfast. संडे ब्रेकफास्ट आपके लिए लेकर आई हूँ मैं यानी रक्षा। 104.2 FM पर आप सुन सकते हैं हमें, और साथ में आप रोवा ऐप के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी वक्त। अपने फ़ोन से रोवा ऐप को डाउनलोड कर लें, और अगर आप उस पर जाएंगे आपको मल्टीपल फीचर्स जो हैं ये देखने को मिलेंगे। आपको लेटेस्ट न्यूज़, आपको हमारे पॉडकास्ट, साथ में आपको हम के म्यूज़िक प्लस स्टेशन जो हैं वो भी वहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे हम्स रिवाइंड, हम्स 80s, ज्यूक बॉक्स, राहत फ़तेह अली खान। सो सूफी गानों का एक अलग से आपको स्टेशन मिलेगा। 80s के जो अमेजिंग गाने हैं वो आपको हम्स 80s ज्यूक बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। हम रिवाइंड, जहाँ पर आपको गोल्डन एरा ऑफ 60s एंड 70s के बेस्ट सॉन्ग्स एंड हिट्स जो हैं एक जगह कलेक्ट करके आपके लिए हमने रखा है, कलेक्शन बनाया है, आप वो सुन सकते हैं। साथ में इफ़ यू लव पंजाबी हिट्स, चढ़दी कला पंजाबी हिट्स इज़ योर गो टू स्टेशन फॉर ऑल द फ्रेश न्यू सॉन्ग्स एंड ऑल द पंजाबी हिट्स। और साथ में अगर आपको भजन एंड कीर्तन पसंद हैं, देर आर टू चैनल्स फॉर फीजी भजन एंड फीजी कीर्तन संग्रह, आप इनमें भी ट्यून इन कर सकते हैं।

सो भाई ये हम कैसे भूल सकते हैं कि इलेक्शन इज अराउंड द कॉर्नर. सो अ लॉट ऑफ इलेक्शन डेड कैंपेन्स आर गोइंग अराउंड, जहां पर अभी हर कैंडिडेट, हर पार्टी का कैंडिडेट जो है वो अपना बेस्ट जो है यहाँ पर हमारे सामने फीचर कर रहा है. लेकिन यहाँ पर हम पर आपके लिए हम इलेक्शन स्पेशल लेकर आएंगे ड्राइव शो पर, और जहाँ पर उनके ड्राइव शो के जो पॉडकास्ट है, जहाँ पर सैंडी और उसबे आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स पर पॉडकास्ट लेकर आते रहे हैं, यहाँ पर आपके पास अगला जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट सुनने के लिए है, जो मैं भी आज सुनने वाली हूँ. इट इज़ अबाउट द अपकमिंग इलेक्शन, जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेबर कैंडिडेट खड़क सिंह, जो ताकानीनी से हैं, उनके साथ बातचीत में पूछी गई, जहाँ पर दे हैव स्पोकन अबाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग, रिटेल क्राइम, कम्युनिटी सेफ्टी अराउंड स्मॉल बिजनेसेस, बहुत सारी चीज़, ट्रैफिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन विजन है फॉर ताकानीनी एंड साउथ ऑकलैंड. एंड वी also got his take on the latest political debate between Chris Hipkins and Christopher Luxon. So, क्या इनके answers थे और क्या labor का plan है आगे जाके, ये पूरा conversation आप सुन सकते हैं अगर आप type करें drive और इसे भेज दें

0: Non-stop Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका. लोटस मेनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी इन नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश. साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट. बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो. फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th November. टीज एंड सीज अप्लाई.
3: Glad I got my enrollment sorted the other day.
4: See, bhai, I told you it was easy.
5: Enrollment for voting? I still haven't done mine. The election isn't until November. I've got time, right?
4: No, not this year. You need to be enrolled by the 25th of October. You can't enroll and vote on the same day.
5: Really? What if I miss it?
4: Well, your vote won't count for this year's election.
5: Achcha, you've convinced me. I'll enroll tonight.
6: Last chance to enroll is midnight 25 October. Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
7: बिग बाजार में बिगेस्ट रेंज ऑफ पूजा घर मिल रहे हैं. प्योर मार्बल मूर्तिज, कॉपर मूर्तिज, गन मेटल मूर्तिज, देवी देवताओं के वस्त्र, सभी तरह के हार एंड एक्सटेंसिव रेंज ऑफ पूजा आइटम्स, बिग रेंज ऑफ कंसोल टेबल्स, मिरर्स, कर्टन्स, सोफा कवर्स, बीना एंड लाहौर ब्रांड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल है. बिग बाजार 302 ग्रेट साउथ रोड, पापटोई, योर वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन दिस नवरात्रि.
8: न्यूजीलैंड के रीसेंट फ्लड्स ने काफी डैमेज किया है. फोकस किचन सारे न्यूजीलैंडर्स की तरह इन विक्टिम्स के साथ खड़े हैं एंड आर हेल्पिंग देम गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ बाय हेल्पिंग देम आउट विद देयर किचन कैबिनेट्स. फोकस किचन प्रोवाइड कर रहे हैं अ वेरी स्पेशल प्राइस फॉर पीपल विद फ्लड डैमेज किचन्स. कॉन्टैक्ट फोकस किचन ऑन 09281-3050, यूनिट के 33 वॉम्सली रोड, ओटाहू. फॉर इन्फो एंड डिजाइन आइडियाज विजिट focuskitchens.co.nz.
9: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
10: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ.
9: बढ़िया है. अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए. और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
10: इंटरेस्टिंग. और कुछ?
9: बस इतना ही.
10: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा.
11: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश. फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु गंडोला, a household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune.
0: Hum. Time check.
12: Brought to you by Maan Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services, open 7 days. Call Maan Tyres on 0800-00010.
0: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
13: Good morning, I'm KM Adams with the latest at 8. The Christchurch councillor for City Ward says the two recent killings there are pointing to a worsening national problem. Jake McClellan says this violence is being felt across the country.
14: Look, this isn't unique to Christchurch. This is a nationwide problem. And, you know, it's terrible to see the stats for this year climbing up in the wrong direction. It's just awful. And my thoughts are with the friends and family of those directly impacted.
13: Police are maintaining a presence in a town northeast of Dannevirke after a serious assault has left one person in a critical condition. The alleged offenders are believed to have fled in a vehicle from Norsewood around 10:30 yesterday morning, and police are wanting to hear from anyone who was in the area at the time. A major Saudi airport has been closed after a suspected missile attack. Dozens of people were reportedly injured in the blast, which comes after other strikes claimed by Yemen's Houthi movement. Donald Trump has also weighed in, telling reporters America may restart its attacks on both the Houthis and their Iranian allies. And Trump has also blasted Norway after missing out on another Nobel Peace Prize. The US president says the move to give the award to a South African legal pioneer instead of him has left a stain on the country and is another example of how the world is ripping off America. Geordie Barrett's dominant performance has led All Blacks to a 50-19 win over the Wallabies at Eden Park. Skipper Cody Taylor believes Barrett is one of the best number 12s in the world.
15: He's one of those men. His physical, his actions on the field are world class.
13: And English Premier League football at Portman Road, Ipswich Town snatched a dramatic 2-1 victory over Fulham, and Arsenal held off Leeds United to earn a hard-fought 2-1 victory.
0: Sports News, brought to you by

वेलकम बैक संडे ब्रेकफास्ट में आपका स्वागत है। मैं रक्षा आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आपका और मेरा सफरनामा चलने वाला है 12 बजे तक। इस घंटे आपके लिए मैं लेकर आने वाली हूं स्पेशल दिवाली अपडेट्स। क्या हो रहा है, हर साल की तरह हम के साथ आपकी दिवाली जो है ये बहुत ही अच्छी बीतने वाली है। आप और मैं यहाँ पर दिवाली में आपके लिए हम सारे अपडेट्स लेकर आते हैं। पूजा सामग्री, क्या चल रहा है दिवाली में, कहाँ आप जा सकते हैं कम्युनिटी में, और साथ में आपके लिए दिवाली के अवसर पर बहुत सारे इनाम जीतने के मौके होते हैं जो कि इस साल भी मौजूद है। सारे डिटेल्स आपके लिए, स्टे ट्यून्ड।

0: सो दिवाली स्पेशल ऑन हम दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर. आपको मैं एक फ़नी चीज़ बताती हूँ कि मैं अपना दिवाली प्रेप मैंने भी करना शुरू किया है, जिसके रिगार्डिंग मैंने अपने लिए एक आउटफिट जो है ये मंगवाया. और जब मैं उस आउटफिट को उसके पैकेट से बाहर निकाल रही थी, मेरा पेशेंस जो है वो छलक के बाहर आया. बड़ी मेहनत से, बड़ा टाइम लगवा के मैंने डिज़ाइन करवाया ये आउटफिट मेरे लिए. और भाई, जब मैंने उस पैकेज को काटा, मैंने इतने गलत तरीके से काटा, क्योंकि मैं बिज़ी थी, मैं काम कर रही थी, और मैं हड़बड़ हड़बड़ में मैंने ये काम करा. एंड आप सोचो क्या हुआ, काटते काटते मैंने पार्ट ऑफ दैट आउटफिट भी काट दिया. अब पहले तो वो इतना महंगा मंगवाया मैंने, इंडिया से मैंने ये आउटफिट जो है डिज़ाइन करके मंगवाया. अब उसके ऊपर एडिशनल काम मेरे सर पर आ चुका है. अब मुझे आके ढूंढना पड़ेगा कि उसको कौन अभी ठीक कर सकता है. सो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जब दिवाली आती है, एक्साइटमेंट इतनी हाई होती है कि हम पहले से ही शुरुआत जो है तैयारियों की कर देते हैं, तैयारियों में लग जाते हैं. तो हम भी आपके साथ इस तैयारी में शामिल है. आपके लिए रामायण एक गाथा, स्पेशल प्रोड्यूस सीरीज़ ऑफ 1 to 2 मिनट एपिक स्टोरी टेलिंग सेगमेंट्स जो हैं, ये आपके लिए हम लेकर आएंगे. एंड डिफरेंट टाइम्स ड्यूरिंग द डे यहाँ पर आपके लिए ये प्ले होने वाला है. सो लेट्स सेलिब्रेट दिस दिवाली विथ अ लॉट ऑफ ब्राइटनेस विद इन अस. सो रामायण एक गाथा आपके लिए ओनली ऑन हम.
1: प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी,

0: न्यूजीलैंड के रीसेंट फ्लड्स ने काफी डैमेज किया है. फोकस किचन सारे न्यूजीलैंडर्स की तरह इन विक्टिम्स के साथ खड़े हैं एंड आर हेल्पिंग देम गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ बाय हेल्पिंग देम आउट विद देयर किचन कैबिनेट्स. फोकस किचन प्रोवाइड कर रहे हैं अ वेरी स्पेशल प्राइस फॉर पीपल विद फ्लड डैमेज किचन्स. कॉन्टैक्ट फोकस किचन ऑन 09281-3050, यूनिट के 33 वॉम्सली रोड, ओटाहू. फॉर इन्फो एंड डिजाइन आइडियाज विजिट focuskitchens.co.nz.
1: Sunday breakfast. Playing Bollywood's biggest hits.
2: So, हर साल की तरह दिवाली के मौके पे इस साल भी आपके पास जो है मौका है इनाम जीतने का. इस बार इनाम का जो प्राइस है वो बड़ा है. तो यहाँ पर आपके पास मौका है लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कैंडोला की तरफ से $1,000 वर्थ ऑफ न्यू वर्ल्ड वाउचर्स. ओ माई गॉड, मैं खुद न्यू वर्ल्ड जाती हूँ एंड क्या बोलूँ, अभी मुझे देखकर ऐसा लग रहा है काश मैं जो है ये वाला जो कभी तक मैं आज तक मैंने कभी नहीं बोला होगा जब भी मैं इनके एंट्रीज या के इन्विटेशंस लेती हूँ, लेकिन इस बार मैं जेन्युइनली बोलना चाहती हूँ, आई रियली विश कि शायद ये मैं जीत पाऊँ. लेकिन ऑफ कोर्स आई कैन नॉट पार्टिसिपेट गाइस. लेकिन आपके पास मौका है यहाँ पर $1,000 वर्थ ऑफ न्यू वर्ल्ड के वाउचर्स जो हैं जीतने का. एक ही विनर होगा. इसमें करना क्या है आपको, आपको टाइप करना है लॉजिक LOGIC और आपका नाम और इसे भेज देना है 5599. पैसा करके आप अपने आप को एक ड्रॉ में शामिल करेंगे जहां पर आपके पास मौका है इस इनाम को जीतने का. टर्म्स एंड कंडीशंस डेफिनेटली डू अप्लाई एंड ड्रॉ आपके लिए हम लेकर आएंगे फ्राइडे ऑन द 30th ऑफ अक्टूबर.

0: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज़।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: 6 महीना बहुत काम कर लिया है, अब तो ब्रेक बनता है।
1: बिल्कुल, तो लेते हैं एक लग्जरियस हॉलीडे ब्रेक, बाली और बैंकॉक।
0: और आप भी चलिए सन टूर्स के साथ ईस्टर 2027 में।
1: बाली 6 दिन और बैंकॉक 5 दिन, कंप्लीट लग्जरियस हॉलीडे पैकेज। बुक कीजिए टिल दिवाली और पाइए फ्री 2 nights 3 days सिडनी टू सिडनी क्रूज पैकेज।
0: 2027 ईस्टर को बनाइए एक्स्ट्रा स्पेशल, बाली बैंकॉक और फ्री क्रूज।
1: बुक नाउ विद सन टूर्स।
0: कॉल करें 0800-478-686।
2: With unmissable deals and huge reductions on the rest of the store, the savings are just too good to miss this weekend at Briscoe's. Shop unmissable deals and huge reductions on the rest of the store. But hurry, end Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
3: It's spring season at Freedom. Save up to 50% off selected sofas and furniture. And for a limited time, take a further 10% off all sofas. Offer ends Monday, only at Freedom.
4: Hey you with the ears. Your skinny phone plan now has rewards. So, all your scrolling, tapping.
5: Babe, wake up, look at this meme.
4: Ha ha reacts and thumbs up from dad will actually pay off. Join Skinny and renew 3 times in a row to collect up to 1,000 everyday rewards points. Skinny and everyday rewards accounts must be linked. See skinny.co.nz for eligible plans and T's and C's. Get the skinny.
6: Happy.
7: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
8: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका। लोटस मैनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी इन नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी 2 फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश। साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट। बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो। फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th November। टीज एंड सीज अप्लाई।
9: Zabardast hits.
10: Shuru ho jaye to rukte nahi.
9: Playing Bollywood's biggest hits.
10: Hum.
9: Let's keep it light and bright on Sunday breakfast.
11: थोड़ी और ब्राइटनेस आपके दिन में मैं यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ, जहाँ पर फॉर्च्यून की तरफ से आपके पास दिवाली में मौका है $1,000 कैश जीतने का। एक ही विनर होगा यहाँ पर। पार्टिसिपेट करने के लिए आप टाइप करें फॉर्च्यून स्पेस आपका नाम और इसे भेज दें 5599 पे। ऐसा करके आप अपने आप को एक ड्रॉ में शामिल करते हैं और अगर आप भाग्यशाली रहें तो ये $1,000 कैश आपका हो सकता है। ड्रॉ आपके लिए हम लेकर आएंगे फ्राइडे 30th October को। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई, आप विजिट कर सकते हैं hum.rova.nz।

संडे ब्रेकफास्ट आपके लिए लेकर आई हूँ मैं यानी रक्षा। 104.2 FM पर आप सुन सकते हैं हमें, और साथ में आप रोवा ऐप के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी वक्त। अपने फ़ोन से रोवा ऐप को डाउनलोड कर लें, और अगर आप उस पर जाएंगे आपको मल्टीपल फीचर्स जो हैं ये देखने को मिलेंगे। आपको लेटेस्ट न्यूज़, आपको हमारे पॉडकास्ट, साथ में आपको हम के म्यूज़िक प्लस स्टेशंस जो हैं वो भी वहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे हम्स रिवाइंड, हम्स 80s, ज्यूक बॉक्स, राहत फ़तेह अली खान। सो सूफी गानों का एक अलग से

आपको स्टेशन मिलेगा, 80s के जो अमेजिंग गाने हैं वो आपको हम्स 80s ज्यूक बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, हम रिवाइंड जहाँ पर आपको गोल्डन एरा ऑफ 60s एंड 70s के बेस्ट सॉन्ग्स एंड हिट्स जो हैं एक जगह कलेक्ट करके आपके लिए हमने रखा है, कलेक्शन बनाया है, आप वो सुन सकते हैं। साथ में इफ़ यू लव पंजाबी हिट्स, चढ़दी कला पंजाबी हिट्स योर इज़ योर गो टू स्टेशन फॉर ऑल द फ्रेश न्यू सॉन्ग्स एंड ऑल द पंजाबी हिट्स। और साथ में अगर आपको भजन एंड कीर्तन पसंद हैं, देर आर टू चैनल्स फॉर फीजी भजन एंड फीजी कीर्तन संग्रह, आप इनमें भी ट्यून इन कर सकते हैं।

0: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
1: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा।
2: अब हमारा क्या होगा?
3: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना।
1: तो क्या करें?
4: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
5: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex और ये है मेरी guest Sarah.
6: क्या बनाते हैं इन kebab को special, Chef Alex?
5: Perfect blend of spices, tender meat और fresh vegetables. हर kebab बनता है with love and passion.
6: Wow, these kebabs are amazing. Spices एकदम right and meat is so juicy.
5: ये है अम्मा's kebab's promise, delivering happiness bite by bite. अम्मा's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
6: 100% authentic and pure as mother's love.
7: With unmissable deals and huge reductions on the rest of the store, the savings are just too good to miss this weekend at Briscoe's. Shop unmissable deals and huge reductions on the rest of the store. But hurry, end Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
8: न्यूजीलैंड के रीसेंट फ्लड्स ने काफी डैमेज किया है। फोकस किचन सारे न्यूजीलैंडर्स की तरह इन विक्टिम्स के साथ खड़े हैं एंड आर हेल्पिंग देम गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ बाय हेल्पिंग देम आउट विद देयर किचन कैबिनेट्स। फोकस किचन प्रोवाइड कर रहे हैं अ वेरी स्पेशल प्राइस फॉर पीपल विद फ्लड डैमेज किचन्स। कॉन्टैक्ट फोकस किचन ऑन 09281-3050, यूनिट के 33 वॉम्सली रोड, ओटाहूहू। फॉर इन्फो एंड डिजाइन आइडियाज विजिट focuskitchens.co.nz।
9: ATs के रेट्रो गाने

वेलकम बैक, यहाँ पर ब्रेकफास्ट शो जारी है। मैं रक्षा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मूड हमारा आपका और मेरा साथ में बहुत ही ताज़ा और फ्रेश है, क्योंकि हमने बहुत सारी ज्ञान की बातें करी हैं, आर्टिकल्स के बारे में बातें करी हैं, क्या हम कर सकते हैं अपने मॉर्निंग्स को अच्छा बनाने के बारे में हमने ये सारी बातें जो हैं अभी तक करी हैं। बट इस घंटे हम और भी नई चीज़ें लेकर आएंगे, जैसे मैं आपके लिए कुछ स्पोर्ट्स अपडेट लेकर आऊँगी, साथ में लेटेस्ट क्या चल रहा है मार्केट में, ये भी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं प्यारे प्यारे गानों के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: मीटर।
1: मूड ऐसा है कि अभी हम बात करने वाले हैं कुछ स्पोर्ट्स के बारे में। अब यहाँ पर बात करेंगे न्यूजीलैंड फुटबॉल, जहाँ पर फुटबॉल फैंस जो हैं उनके लिए ये है, ऑकलैंड सिटी एफसी दे हैव बीन मेकिंग हेडलाइंस इन न्यूजीलैंड नेशनल लीग चैंपियनशिप, जहाँ पर लास्ट वीकेंड दे सिक्योर्ड अ 4-2 विक्ट्री ओवर ईस्टर्न सबर्ब्स इन मेंस नेशनल लीग चैंपियनशिप। और उसके बाद कल यानी शनिवार को यहाँ पे न्यूजीलैंड फुटबॉल्स कॉम्पिटिशन जो है वो खेला गया, जहाँ पर ऑकलैंड सिटी दे वर स्केड्यूल्ड टू फेस वेलिंगटन ओलंपिक येस्टरडे। और ये जो मैच है ये बहुत टाइट रहा, पहले तो 2-2 का स्कोर था, उसके बाद 6-7 टाई ब्रेकर्स होने के बाद फाइनली ऑकलैंड सिटी एफसी जो है ये इस मैच को जीत गई एंड ब्रिंगिंग ऑल्सो देयर ओवरऑल स्कोर टू नंबर 4, वायर वेलिंगटन ओलंपिक जो है ये स्लिप होकर नंबर 5 पर जा चुकी है। सो दिस वॉज अ रोरिंग मैच, जैसा कहते हैं फैंस की वजह से मैच जो है उसका अलग रिदम होता है, और साथ में टीम वर्क, डिसिप्लिन और कमिटमेंट जो होती है खिलाड़ियों की बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है। तो एकदम धुरंधर सा मैच था ये देखने के लिए, और अभी मैंने इसको खुद नहीं वॉच किया है, बट यहाँ पर कल स्टूडियो में भी आपके लिए लाइव स्कोर दिया जा रहा था, बट हाँ आई कैन फील द वाइब, द धुरंधर वाइब फ्रॉम दिस स्कोरिंग। आपका क्या कहना है?

What a beautiful song. यहाँ पर ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपका जो मूड है उसको इंस्टेंटली अच्छा कर देती है, एक दिन को आपका अच्छा कर देती है? देर आर मैनी थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी लिसनिंग टू योर फेवरेट बॉलीवुड सॉन्ग, जो मेरे साथ होता है, और जस्ट अ मैसेज फ्रॉम समवन यू लव, या मेरे एक चीज़ जो हम सबके लिए आई थी आज की डेट में, अगर एक्स्ट्रा 5-10 मिनट ऑफ स्लीप मिल जाए तो फिर बहुत रिलैक्सेशन होता है. तो और साथ में अगर आपकी परफेक्ट मॉर्निंग कप ऑफ चाय या कॉफ़ी मिल जाए तो दैट ऑल्सो यू नो अपलिफ्ट्स योर मूड. तो यहाँ पर मेरा सवाल नहीं है, ऐसा डिस्कशन करने वाले हैं मैं और आप कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपको इंस्टेंटली आपके मूड को अपलिफ्ट कर देती है. आजकल बड़े सारे मीम्स भी चल रहे हैं इसके अराउंड, जहाँ पर चाय जो है वो बॉयल हो रही है और उसके ऊपर ऐसे दो कैट्स जो हैं वो डांस कर रहे हैं, समथिंग दैट अपलिफ्ट्स माई मूड एंड दैट्स चाय. सो क्या है ऐसा आपके साथ, ज़रूर मुझे यहाँ पर बताएं 5599 पर.

0: लो थोड़ा सा जिलो थोड़ा थोड़ा मर लो
1: दुनिया में आए हो तो लव कर लो दुनिया में आए हो तो लव कर लो थोड़ा सा जिलो थोड़ा

सो मूड मीटर में आपको मैं थोड़ा ट्रैफिक बुलेटिन भी दे दूं कि 1 अक्टूबर से ऑकलैंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट जो है इन्होंने कुछ नई चेंजेस जो हैं वो लेकर आए हैं. उसमें 2 चेंजेस हैं प्रिसाइसली. एक चेंज मुझे अच्छे से याद है कि अगर बस जो है वो मर्ज करना चाहती है स्पेसिफिकली मोटरवे पे, आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, तो बस को वे देना है बेसिकली. जहाँ भी मर्ज करना थी वहाँ बस को प्रायोरिटी देना है, और वो बस का काम है 3 सेकंड तक इंडिकेट करके, और फिर आप प्रायोरिटी दे या ना दो वो तो लेन चेंज कर लेगी. तो प्लीज़ आप अपने आप को जो है वो बचाएं. एंड देयर वाज समथिंग रिगार्डिंग कीपिंग डिस्टेंस इन लेन्स. मैं वापस से रीड करके आपको आके और भी यहाँ पे सॉल्व करती हूँ. बट देर आर 2 मेन चेंजेस जो 1 अक्टूबर से हुए, आप भी खुद जाके पढ़ सकते हैं. बट उसके अलावा आई वॉन्टेड टू से दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अ लॉट ऑफ रोड क्लोजर्स एंड ऑल जो है यहाँ पर, तो आपको पता है कौन वाला कौन क्या बोलते हैं यार सिटी ऑफ कोन्स वो तो है. बट यहाँ एनजेड ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो है इसने पब्लिश किया है स्केड्यूल फॉर ओवरनाइट मोटरवे क्लोजर्स अक्रॉस ऑकलैंड फ्रॉम संडे व्हिच इज टुडे 11th of October थ्रू टू फ्राइडे 16th of October, जहाँ पे कुछ मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट वर्क होगा. ये रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक होगा. तो थोड़ा सा आप भी अगर मोटरवे वगैरह यूज़ कर रहे हैं 9 बजे के बाद, तो ऑनलाइन चेक कर लें, अपना प्लान आउट कर लें उसके अकॉर्डिंग, बिकॉज देयर विल बी क्लोजर्स एंड दैट कैन क्रिएट अ ट्रैफिक एंड अ न्यू सेंस फॉर यू. जो आप 10 मिनट का जर्नी सोचेंगे वो आपका ऑटोमेटिकली 30 मिनट का हो जाएगा. इसके अलावा अगर आपके पास क्लोजर के बारे में और भी कोई जानकारी है, और आप यहाँ पर कोई अच्छा सा एक क्या बोलते हैं स्टोरी लेकर आ सकते हैं, जिसमें आप बता सकते हैं किस तरीके से आप यहाँ पर कभी फंस गए रोड क्लोजर के चक्कर में और आपका 10 मिनट का जर्नी 1 घंटे का हो गया. मेरे पास ऐसी स्टोरी है, और अगर आपके पास है तो आप भी प्लीज़ मुझे बताएं, यहाँ पर हम शेयर करेंगे 5599 पर.

मूड को अपलिफ्ट करने वाली बात यहाँ पर मैं एक और लाई हूँ भाई। अरिजीत सिंह जो है, इन्होंने अपना इंडिया टूर अनाउंस किया है, जिसमें ये ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग जगहों पर जाके परफॉर्म करने वाले हैं। तो अगर आपका कोई प्लान है इंडिया जाने का, तो प्लीज़, मतलब मैं क्यों प्लीज़ बोल रही हूँ, मतलब दिस इज़ समथिंग, इट्स अ प्रिविलेज फॉर ऑल ऑफ अस बिग फैंस ऑफ अरिजीत। रेयरली मैं किससे मिली हूँ जो अरिजीत का फ़ैन नहीं हूँ। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत कॉमेंट एंड ऑल करते, जैसे मैं एक बार एक कैचअप में गई थी, जहाँ पर मैं कुछ लोगों से मिली जो कि कह रहे थे यार अरिजीत जो है ना, वो हमेशा मतलब वही हार्ट ब्रेक, दिल टूटने वाले गाने गाता, तो उसके ना गाने सुन के ना बहुत सैडनेस फील होती है भाई। अब क्या बोलूँ, अभी कोई हर तरीके के सिंगर्स होते हैं यहाँ पे। अरिजीत जो है वो हर तरीके की फीलिंग आपको फील करा सकते हैं, उस लेवल के वो सिंगर हैं, उस लेवल के वो आर्टिस्ट हैं। तो यस, ही हैज़ अनाउंस्ड हिज मल्टीपल शोज ऑल ओवर इंडिया, सो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग और अगर आप उनको लाइव देखना चाहते हैं, तो आपके पास अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है 2027 में, जहाँ पर आप ऐसा कर पाएंगे।

0: Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: माँ, एक चोटी होती है ना? हाँ, एक चोटी मुझे भी.
3: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा, तो यही तो होगा. न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी. जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा. कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड. खुशियाँ पकाएं, खुशियाँ खिलाएं.
4: Tick off your spring to-do list for less at Mitre 10. Save $50 on selected 10-litre solar guard exterior and roof paint. And get growing with three 10-centimetre herb plants for just $18. T's and C's apply. Shop now at Mitre 10.
5: High five! High five? Anybody? No? Ah, that's right. It's $5 weeks at Pack and Save. Low five! Ah, that's more like it. Although this would make a lot more sense if I had fingers. $5 weeks! On now at Pack and Save.
6: इस दिवाली घर को दियो के साथ सोना संसार के गहनों से भी रोशन कर डालिए.
7: अरे तेजल, चल जल्दी जाइए धनतेरस माटे शॉपिंग करवा सोना संसार में. तने जे पसंद पड़े ए बाय करी लेजे. लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन के लिए एक ही पता, सोना संसार.
6: दिल वाली दिवाली सोना संसार के साथ 190 स्टोरार्ट रोड माउंट रॉस्किल. कॉल 09629333.
8: फ्री गोल्ड कॉइन्स ऑन डायमंड ज्वेलरी? सीरियसली माही?
9: यस बेबो.
8: कैच क्या है?
9: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ. डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री गोल्ड कॉइन्स. साथ ही सिलेक्टेड ज्वेलरी पर डायमंड वैल्यू और मेकिंग चार्जेस में अप टू 40% ऑफ का फायदा उठाओ.
8: आई स्टिल कांट बिलीव इट. नो कैच.
9: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो. दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, बॉटनी टाउन सेंटर, ईस्ट ऑकलैंड.
10: DNC supply.
11: Keep calm because Punjabi swag is on.

यहाँ पर उस हर इंसान के लिए जिसको स्पोर्ट्स जो है ये इसमें दिलचस्पी है, बीआर अंबेडकर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब आपके लिए होस्ट करने वाले हैं 34th एनुअल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल टूर्नामेंट जो कि होगा 24 एंड 25 अक्टूबर को. इन दोनों दिनों देर विल बी अ रेंज ऑफ स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन इंक्लूडिंग कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल एंड टग ऑफ वॉर. प्लेंटी ऑफ फन एक्टिविटीज भी होगी फॉर चिल्ड्रन एंड वुमेन, इंक्लूडिंग लेमन एंड स्पून रेसेस, म्यूजिकल चेयर्स एंड चिल्ड्रंस रेसेस. एंट्री जो है ये फ्री है सबके लिए. एंड इफ़ यू वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन एनी स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन तो रजिस्ट्रेशन जो है उसकी रिक्वायरमेंट होगी. आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं प्रदीप को ऑन 021-238-5948.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: With unmissable deals and huge reductions on the rest of the store, the savings are just too good to miss this weekend at Briscoe's. Shop unmissable deals and huge reductions on the rest of the store. But hurry, end Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
2: Thinking of switching lanes? How about insurers? Switching to Tower is easy. Plus, get $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code EASYSAVE. T's and C's apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
3: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
4: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका। लोटस मेनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी एंड नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश। साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट। बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो। फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th November. टीज एंड सीज अप्लाई।
5: 35 minutes and we've moved 3 kilometers. Welcome to peak hour commute, babe. Maybe I should use this time to check if I'm eligible to vote.
6: Over 18? Lived here for more than a year? And a resident for electoral purposes?
5: Yeah, that sounds like me.
6: Then why don't you enroll now? Only takes a few minutes.
5: Well, you're driving, so I'll do it now. That was quick and easy.
7: Last chance to enroll is midnight 25 October. Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
8: Chill, sip, smile.
9: This is Sunday Breakfast.
8: Zaika, to feel hope. Tickle your taste buds.

So this is my favorite segment of the whole show because it talks about food and flavors, जो कि मेरा सबसे favorite है और ऐसा कोई cuisine नहीं है all over the world जिसमें जिसका कोई food item मेरा favorite नहीं, ऐसा नहीं हो सकता because I am a foodie, I have a lot of love for people who are foodies and love food. पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है जो खाना नहीं खाते, मेरा मतलब ये नहीं कि आप हमेशा छोले भटूरे पेल रहे हो, मतलब जो ढंग से खाना नहीं खाते जिनको, और साथ में अगर आपको न्यूट्रिशन एंड ऑल की अच्छी नॉलेज है तो मुझे लगता है आप कम क्रैंकी रहते हो और आप ज़्यादा फोकस कर पाते हो, मुझे ऐसा लगता है. बट यहाँ पर अभी हम बात नहीं करेंगे CPF रेशियोज, मैक्रो एंड माइक्रोज के बारे में, हम बात करेंगे कि क्या टिकल करते हैं हमारे टेस्ट बड्स को. तो आज जो है, आज स्पेशल है एशियन क्विजीन के बारे में हम बात करेंगे. एशियन क्या फेमस है हमारे एशिया में खाने में, द वर्ल्ड इसको कहते, बेसिकली हमारे क्विजीन को वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स कहते हैं बिकॉज अलग अलग चीज़ें. अब जैसे कि चाइना का डम्पलिंग, थाईलैंड का ग्रीन करी एंड पैड थाई और सांच में जापान की सुशी एंड रेमन, ये तीनों कम्प्लीटली डिफरेंट क्या बोले यार, फूड आइटम्स से कम्प्लीटली डिफरेंट फ्लेवर्स हैं एंड ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर द एशियन वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स. तो यहाँ पर सुशी एक ऐसा कंपोनेंट है अभी वर्ल्ड में कि अगर आप किसी से रैंडम पूछो उनका फेवरेट क्या है तो सुशी. उसके बाद डम्पलिंग्स या डिमसम चाइना स्टाइल, नॉट इंडियन वाले दिल्ली वाले मोमोज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लोगों डम्पलिंग्स के बारे में, डम्पलिंग के बारे में बात कर रही हूँ. फिर इसका बिल्कुल ही अलग ही जोन है, उसमें फ्राइड का भी अलग है और स्टीम का बिल्कुल ही अलग है. और साथ में जैसे ही हम मिलते हैं, बढ़ते हैं थाई फूड की तरफ जो मेरा बहुत ही फेवरेट है, आपको सतरंगी तरह की तो यहाँ पे करियाँ मिल जाएंगी जो कि मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये तो तीनों कलर ऑफ करी होता है, इसमें रेड येलो एंड ग्रीन, इसमें इतना कितना डिफरेंस है, इतना कितना मैंने वर्ड यूज़ किया है गाइस. तो यहाँ पर आपका कौन सा फेवरेट है मुझे बताएं 5599.

अब क्योंकि हम खाने पीने की बात कर रहे थे, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि थाई फूड मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसमें वो हर कंपोनेंट है जो कि मैं एक मील में खाना पसंद करती हूँ। जैसे आपको थोड़ा मीट भी मिल जाता है, आपको थोड़ा ग्रेवी करी मिल जाती है, आप थोड़ा कार्ब्स राइस खा सकते हो, वेजी आपको साथ में मिल जाता है। अगर आपको चिकन नॉनवेज खाने का मन नहीं है, आप टोफू डाल के खा सकते हो, तो एक होलसम मील बन जाता है, इसीलिए मुझे पसंद है। और ऑफकोर्स जो टेस्ट बड्स हैं मेरे, उसका जो फ्लेवर आता है, आई जस्ट लव इट। बट यहाँ पर आपके लिए और मेरे लिए एक प्रो टिप है, तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो ज़्यादा चिली किक जो है इसको नहीं बर्दाश्त कर सकता है, तो आप जब भी किसी थाई रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर करते हैं, जो कि अगर आप ऑलरेडी ज़्यादा मेरे जैसा बहुत थाई खाते हो तो आपको पता है कि कभी भी जहाँ पर वो मीडियम टू स्पाइसी का जोन आना शुरू होता है, उस वाले जोन में नहीं जाने का, उसके नीचे रहने का, नहीं तो अदरवाइज आप खाना जो है अपना फिनिश नहीं कर पाओगे। जब इनिशियली मैंने थाई खाना शुरू किया था, जब भी मैंने फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम खाया होगा, मैंने ये मिस्टेक्स करी हैं और जिसकी वजह से मैं उस मील को फिनिश नहीं कर पाई हूँ। इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट ये देखने से लगता होगा कि कोकोनट मिल्क है एंड ऑल ऑफ दोज कंपोनेंट्स, अगर जो चिल्ली किक है वो चला गया ऊपर, तो आपकी लगने वाली है और फिर बहुत ही सारा जो फ्लेवर है यहाँ पर टिकल कुछ किसी और ही जोन में चला जाएगा। आपका क्या कहना है? वैसे क्या टिप है आपके पास अगर किसी को बहुत मिर्ची लग गई है, इंस्टेंट उसको ठीक करने का क्या टिप है आपके पास? प्लीज़ ये मत बोलना कि चीनी खा लो, ये खा लो, कुछ और, मतलब कुछ नया इनोवेटिव टिप बताएं 5599 पर।

0: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
1: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
0: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
1: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
0: बस इतना ही।
1: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
2: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक Finance and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry. And Fortune, bring home the fortune.
3: मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ। जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप ओवरवेल्ड हैं या इमोशंस मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है। एशियन फैमिली सर्विसेज आपके कल्चर को समझते हैं और प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियल और फ्री इमोशनल सपोर्ट देते हैं। कॉल एशियन हेल्पलाइन फ्री ऑन 0800-862-342। अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें।
4: Now there's a better way to a new phone with Spark Upgrader. Combine our huge phone deals with great trade-in savings, plus look out for exclusive offers just for you. See what you could save on a new phone at spark.co.nz/upgrader. Available interest-free, credit criteria and terms apply.
5: Fall in love with your home again with an ANZ Reno loan. A home loan top-up of up to $50,000 at just 2.5% per annum, fixed for 3 years. Minimum 20% equity eligibility, lending rules, terms and fees apply. Available for a limited time. ANZ, we do have.
6: Keen to score 20 cents per litre off your fuel? Scan Club Plus from Friday to Sunday when you spend $100 at New World, Pack and Save or Foursquare. That's some smart shopping. T's and C's and exclusions apply.
7: Brewing good vibes Sunday style.
8: Sunday breakfast on Hum.
7: Zaika to feel hope. Tickle your taste buds.
9: संडे ब्रेकफास्ट आपके लिए लेकर आई हूँ मैं यानी रक्षा। 104.2 FM पर आप सुन सकते हैं हमें और साथ में आप रोवा ऐप के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी वक्त। अपने फोन से रोवा ऐप को डाउनलोड कर लें और अगर आप उस पर जाएंगे आपको मल्टीपल फीचर्स जो हैं ये देखने को मिलेंगे। आपको लेटेस्ट न्यूज़, आपको

हमारे पॉडकास्ट, साथ में आपको हम के म्यूजिक प्लस स्टेशंस जो हैं वो भी वहां पर देखने को मिलेंगे, जैसे हम्स रिवाइंड, हम्स 80s, ज्यूक बॉक्स, राहत फतेह अली खान. सो सूफी गानों का एक अलग से आपको स्टेशन मिलेगा. 80s के जो अमेजिंग गाने हैं वो आपको हम्स 80s ज्यूक बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे. हम रिवाइंड, जहाँ पर आपको गोल्डन एरा ऑफ 60s एंड 70s के बेस्ट सॉन्ग्स एंड हिट्स जो हैं एक जगह कलेक्ट करके आपके लिए हमने रखा है, कलेक्शन बनाया है, आप वो सुन सकते हैं. साथ में इफ यू लव पंजाबी हिट्स, चढ़दी कला पंजाबी हिट्स इज योर गो टू स्टेशन फॉर ऑल द फ्रेश न्यू सॉन्ग्स एंड ऑल द पंजाबी हिट्स. और साथ में अगर आपको भजन एंड कीर्तन पसंद हैं, देर आर टू चैनल्स फॉर फीजी भजन एंड फीजी कीर्तन संग्रह, आप इनमें भी ट्यून इन कर सकते हैं.

वेलकम बैक। सो आज हम बात करेंगे उन गानों की, उन फिल्मों की, उन टीवी शोज की एंड उन सेलिब्रिटीज की जो आज भी हमारे दिलों में रहते हैं। तो भाई याद है आपको एक टाइम था जब रिकॉर्डिंग होती थी गानों की, फिल्म पोस्टर्स जो हैं कलेक्ट किए जाते थे, डायलॉग्स आज भी मेमोराइज किए जाते हैं, बट पहले बहुत सुना है कम समय मिलता था। एक दिन में एक्टर्स जो हैं वो यार ये तीन तीन शिफ्ट्स जो हैं ये किए जाते थे। तो फैंस फेवरेट फ्लैशबैक में आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी लेकर आने वाली हूँ। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसा है जो आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं 5599 पर।

0: पिंटरेस्ट पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
3: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
4: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
5: अब हमारा क्या होगा?
6: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना
4: तो क्या करें?
7: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
8: The first time Glenn saved lives was a Thursday. He was wearing odd socks. He crossed his feet. No one seemed to notice. The second time wasn't quite as dramatic. He closed his eyes to see how many dog breeds he could name. 22. Not bad, Glenn. Not too bad. Sit back and save lives at your local NZ Blood Donor Centre or mobile drive. Visit nzblood.co.nz to book your blood or plasma donation appointment.
9: Few things sound better than logs crackling in a fire, rain on a tin roof, my voice, and the words you've won a pair of Bose headphones. Be in to win one of 50 pairs when you join Southern Cross Health Insurance by 11th of October. See website for details. T's and C's apply.
10: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
11: Shop fresh deals at New World North Island this week. Get skinless chicken thigh cutlets, $11.99 per kilo. Or avocado, 2 for $2.50. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.

0: यार आज फैंस फेवरेट थ्रोबैक में मैं बात करना चाहती हूँ, थ्रोबैक नहीं फ्लैश बैक में बात करना चाहती हूँ हमारे बॉलीवुड के सबसे रिनाउंड एडमायर रिस्पेक्टेड एक्टर जिनका नाम है अमिताभ बच्चन जी। सो अमिताभ बच्चन जो हैं ये एक बहुत ही फेमस शो भी होस्ट करते हैं, आपको हमको हम सबको पता है कौन बनेगा करोड़पति। अब कौन बनेगा करोड़पति यार आज तो चल ही रहा है, बट एक टाइम था जब इसका एक ओरा हुआ करता था और लोग बिल्कुल अपना खाना पानी सब लेकर ना तैनात हो जाते थे टीवी के सामने कि भाई अभी कौन बनेगा करोड़पति, इसकी शुरुआत होने वाली है। एक टाइम था जब मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहती थी इसमें, लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने नहीं किया, बिकॉज जो थोड़ी बहुत इज्जत मेरी खुद के दिलों में और जहन में मेरे रह गई है वो भी धुल जाती, क्योंकि भाई खतरनाक सवाल कुछ टाइम के बाद आने शुरू हो जाते हैं। एनीवेज इनके एक बार क्या बोलते हैं, द ब्यूटी ऑफ द शो इज़ दैट वी गेट टू लर्न मोर अबाउट अमिताभ बच्चन इन जनरल, जहाँ पर वो अपने फादर हरिवंश राय जी बच्चन की पोइट्री एंड बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं शो में भी लेकर आते हैं। बट मुझे अभी भी याद है एक बहुत ही फ़नी सा एपिसोड था जिसमें एक लड़का था, वो आई थिंक ही वॉज़ समवेयर इन द मिड जोन, और शायद आपको भी ये याद हो, और उसको 3 लाइफलाइंस मिलती हैं शो में। अगर आपको किसी क्वेश्चन में आंसर करने में अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या आंसर है, तो आप लाइफलाइन यूज़ कर सकते हो। तो उसमें एक लाइफलाइन होती है कॉल योर फ्रेंड। तो एक लड़का जो है इन्होंने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया और बाद में पता चला लाइक कि ये जो लड़की जिसको इस लड़के ने फ़ोन किया वो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड है, और उसने ना जो आंसर बताया इस लड़के को पता नहीं क्यों कन्विंसिंग नहीं लगा, और इसने वो आंसर्स नहीं बताया आगे जाके, उसने कुछ और ही बताया, एंड एक्चुअली उस लड़के का आंसर सही था, उस लड़की का आंसर गलत था, एंड द गर्ल वॉज ऑल्सो हिज एक्स। तो उस पर बहुत ही एक फ़नी सा जो एक एटमोसफेयर है वहाँ सेट पे क्रिएट हो गया, एंड ऑफकोर्स जब हम घर पे बैठ के देख रहे थे तो बहुत ही मतलब एटमोसफन हो गया था, और उसमें लोग जो है अभी आपको पता है कि बॉलीवुड सितारों की पर्सनल लाइफ को कोई छोड़ता तो है नहीं, तो अमिताभ बच्चन की पर्सनल लाइफ में भी लोग उसके बाद निकल के उसके हज़ारों मीम जो हैं उस एपिसोड के बाद जो हैं कौन बनेगा करोड़पति को लेकर बन चुके थे। अगर आपको भी याद है कुछ ऐसा जो कि KBC के टाइम पर आपने देखा था तो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं 5599 पर।
1: जबरदस्त हिट्स शुरू हो जाए तो रुकते नहीं, प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। हम
2: हे चैट GPT, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
3: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
2: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
3: इंटरेस्टिंग, और कुछ?
2: बस इतना ही।
3: सर, मैं ChatGPT हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
4: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु गंडोला, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एंड फॉर्चून, ब्रिंग होम द फॉर्चून।
5: माई टिटन मेगा हेंडरसन अब वीकडेज पे सुबह 6 बजे से खुला है। बिल्डिंग सप्लाईज, टिम्बर, पावर टूल्स और ट्रेड एसेंशियल्स सब कुछ साइट पे जाने से पहले ही उठा लो। गेट इन, गेट सॉर्टेड एंड गेट द जॉब डन अर्लियर। ओपन फ्रॉम 6 AM। माई टिटन मेगा हेंडरसन।
6: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
7: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
6: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
7: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
6: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
8: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
9: 3, 2, 1, rush! Rewards Rush is back at BP. Get double everyday rewards points on fuel and shop, plus score 10 times points on selected items. Whether you're fueling up, grabbing a coffee, or stocking up on your favourite snacks, there's more to score at BP. Scan everyday rewards today. Offer ends 13 October. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewards-rush.
10: बिग बाजार में बिगेस्ट रेंज ऑफ पूजा घर मिल रहे हैं. प्योर मार्बल मूर्तिज, कॉपर मूर्तिज, गन मेटल मूर्तिज, देवी देवताओं के वस्त्र, सभी तरह के हार एंड एक्सटेंसिव रेंज ऑफ पूजा आइटम्स, बिग रेंज ऑफ कंसोल टेबल्स, मिरर्स, कर्टन्स, सोफा कवर्स, बीना एंड लाहौर ब्रांड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल है. बिग बाजार 302 ग्रेट साउथ रोड, पापटोई, योर वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन दिस नवरात्रि.
11: फ्री गोल्ड कॉइन्स ऑन डायमंड ज्वेलरी, सीरियसली माही?
12: यस बेबो.
11: कैच क्या है?
12: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ. डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री गोल्ड कॉइन्स, साथ ही सिलेक्टेड ज्वेलरी पर डायमंड वैल्यू और मेकिंग चार्जेस में अप टू 40% ऑफ का फायदा उठाओ.
11: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच.
12: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो. दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, बॉटनी टाउन सेंटर, ईस्ट ऑकलैंड.
13: PNC Supply.
14: Chill, sip, smile.
15: This is Sunday Breakfast.
0: So, यहाँ पर with October already here and the festive season is totally on. गरबा जो है, गरबा और डांडिया, ये आपके लिए इनकी शुरुआत हो चुकी है अगर आप नवरात्रि के सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं. आज यानी 11 अक्टूबर से लेकर ट्यूसडे 20 अक्टूबर को 6 PM ऑनवर्ड्स रामकृष्ण मंदिर 25 ऑनस्लो एवेन्यू मनोकाव में आपके लिए नवरात्रि सेलिब्रेशंस होंगे. गरबा एंड डांडिया रास डेली आफ्टर कथा. इसके अलावा श्री हनुमान मंदिर 14 बे पार्क प्रेस बर्कडेल नॉर्थ शोर में 6 PM शाम से 6:15 PM ऑनवर्ड्स डीजे गरबा 8:10 से 9:30 एंड भजन जैमिंग एंड डीजे गरबा 18 अक्टूबर को 6:30 से आपके लिए चलता आएगा. इसके अलावा दिव्या शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट जो है ये भी आपके लिए एट दी के 5/57 कैवेंडिश ड्राइव मनोकाव ऑपोजिट वेयर हाउस में गरबा डांडिया और रास आफ्टर कथा भी लेकर आएगी, जिसकी शुरुआत भी आज हो जाएगी एंड दिस विल गो on until Tuesday the 20th of October.

थैंक यू सो मच मेरा साथ निभाने के लिए. मेरी और आपकी जो मुलाकात है वो फिर से होगी बहुत ही जल्द. तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का और भी ज़्यादा ध्यान रखें, एंड डोंट फॉरगेट टू कीप हमिंग अलॉन्ग.

0: With unmissable deals and huge reductions on the rest of the store, the savings are just too good to miss this weekend at Briscoe's. Shop unmissable deals and huge reductions on the rest of the store. But hurry, end Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
1: Hey you with the ears. Your skinny phone plan now has rewards. So, all your scrolling, tapping, babe, wake up, look at this meme. Ha-ha reacts and thumbs up from dad will actually pay off. Join Skinny and renew 3 times in a row to collect up to 1,000 everyday rewards points. Skinny and everyday rewards accounts must be linked. See skinny.co.nz for eligible plans and T's and C's. Get the skinny. Happy.
2: My future is still being written. I don't know what I'll be when I grow up, but I know I want the chance to find out. Your investment in children can help me get there. With the right support, I can feel safe, learn, grow, build confidence, and discover what I'm capable of. That's why Barnardos is asking Aotearoa to invest in children. Invest in children at investinchildren.nz. And invest in me.
3: विदेश से लोगों को यहाँ काम करने के लिए अब employer accreditation compulsory हो गया है. Immigration के नए rules और परेशानियों से बचने में आपको मदद करेंगे Auckland South Immigration Consultants के अतीश नारायण. Appointments के लिए phone करें 0800-168-472 पर. अतीश नारायण और उनकी team after hours और weekends पर भी available रहते हैं. For more details, visit their website isic.co.nz.
4: Driving you home. Drive.
5: The Drive Show with Sandy and Rusby.
6: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
7: ये गलत बोल दिया यार.
6: और पहनता भी नहीं उसको.
7: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
6: इंटरेस्ट
8: ब्रांड हो गया
7: अभी ब्रांड हो गया ना.
6: रुस्बे के बाल लगे उस.
5: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J2.
9: Time check.
10: Brought to you by Mann Tires. For all kinds of tires and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tires on 0800 00 00 10.
9: To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
11: Good afternoon, I'm KM Adams with the latest at midday. Following long delays for commuters at train stations after last night's Bledisloe Cup match, Eden Park CEO Nick Sortner says transport infrastructure around the stadium must be upgraded to support the future City Rail Link.
12: We call on council and government to look at enhancing the infrastructure supporting major events. 40% of our event day cost relates to integrated ticketing and traffic management, and we expect a better service.
11: Mental health workers at South Island charity Able Minds have voted to accept a new collective agreement. The PSA union says the deal rules out the proposed 90-day fire-at-will trials for new employees, which had sparked 5 years of bargaining. Police in Pennsylvania are investigating a mass shooting which left 8 victims and a suspected gunman dead. Erie Chief Rick Laura.
13: Since that initial response, our major crimes detectives have continued investigating the circumstances leading up to the shooting. Out of respect for the victims and the families, I will not discuss the details of what our officers encountered inside that home.
11: An American prisoner, Krista Pike, has been discharged from hospital and returned to the facility she spent decades in before a botched execution attempt last month. It's not clear if authorities will try to carry out her death sentence again. 4 changes to the All Blacks after injuries from last night's Bledisloe Cup clash at Eden Park. Duplessis Kariffi comes in for Anton Segner, who's been ruled out with concussion. George Bell replaces Asafor Amor. Veteran Anton Lennett-Brown has also been called up in place of Leroy Carter, and Canterbury's Jamie Hannah provides cover for Ethan Blackadder. At stumps on day 2 of the first test between South Africa and Australia in Durban, the Proteas trailed the Aussies by 363 runs. Matt Renshaw notched up a century as Australia were dismissed for 390.
5: Sports News.
9: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
14: Hum par shok suchnaye aap tak late hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
15: Suchit kiya jata hai. Dr. Arvind, Dr. Subhash aur Dr. Vijay Ranchod ke mataji काशी रणछोड़ के पति तथा गुडवुड हाइट्स के मगन रणछोड़ की मृत्यु ओकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार ट्यूसडे 1 PM एन्स फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रीमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। सूचित किया जाता है डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर सुभाष और डॉक्टर विजय रणछोड़ के माताजी काशी रणछोड़ के पति तथा गुडवुड हाइट्स के मगन रणछोड़ की मृत्यु ओकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार ट्यूसडे 1 PM एन्स फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रीमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा।
14: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
8: Playing Bollywood's biggest hits.
16: Budget Gandhi.
8: Just chill.
9: You're listening to Avineet.
15: Kia ora, bula, salam, namaste, sasriyakal, namaskaram, kem cho, main hu abhi aa gaya hu aapke liye live studios mein yahan hum par, jahan aap sunte hain Bollywood ke bade bade hits aur gaane, ye sabhi kuch aapke liye lekar aaya hu ek baar phir aaj Just Chill mein, jabki hamara aur aapka saath rahega abhi se lekar 6 बजे तक। तो ये जस्ट चिल का कारवा है, आप जिसे सुन रहे हैं 104.2 FM साथ में रोवा पर, जबकि आज है 11 तारीख अक्टूबर, तो ऐसे में नवरात्रि की शुरुआत आज से हो रही है। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। और इसके अलावा ढेर सारे स्पोर्ट्स और जो गेम्स मैचेस हुए हैं इस पर भी आपसे बातें करेंगे, अपडेट्स लेके आएंगे आपके लिए। इसके साथ में ढेर सारी और भी बातें रहेंगी और कुछ करंट अफेयर्स को लेकर, क्या कुछ यहाँ हो रहा है जनरल इलेक्शंस को लेकर, इस पर भी अपडेट्स आप तक पहुँचाते रहेंगे। साथ ही साथ में प्रमोशंस है कुछ शानदार जो आपके साथ में, ये भी रहेगा आज हमारे प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ जबकि आज 11 तारीख अक्टूबर है, तो बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन आज अपना 84th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि एक खुद ही खुद में एक इंडस्ट्री है बॉलीवुड में। और इनके फिल्मों के बारे में बात करें, दीवार, शोले, कभी कभी साथ में अमर अकबर एंथनी, परवरिश, त्रिशूल, डोन या फिर मुकद्दर का सिकंदर और अंधा कानून, साथ में दीवार, द ग्रेट गेमला, सहनशाह, ऐसे ऐसे फिल्मों को इन्होंने हमारे लिए दिया है। और आज जबकि इनका जन्मदिन है, तो ऐसे में आज का जो पहला गाना है इन्हीं के नाम पर रहेगा। अमिताभ बच्चन जिनकी जन्म हुई थी 11th of October 1942 में, तो आपका सबसे फेवरेट अमिताभ बच्चन फिल्म कौन सी है जो आपको आज भी पसंद है? हालांकि काफ़ी साल पहले आपने देखा होगा, लेकिन इट इज़ स्टिल देयर इन योर मेमोरीज, और आज भी जब भी आप देखते हैं, रिकॉल करते हैं उस फिल्म को, तो यू ट्रूली एन्जॉय इट। तो अमिताभ बच्चन का आज जन्मदिन है, ऐसे में जो पहला गाना है ये इसी से शुरुआत करेंगे, जबकि बागबान फिल्म से हमने आपके लिए लिया है।
17: Valentine's Day.

हम पर रवि का साथ है और 12:20 हो रहे हैं। कल से वापस स्कूल्स खुल रहे हैं, तो अगर जो आपको भी कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है बच्चों के लिए, जो स्टेशनरी या फिर उनके कुछ और रिक्वायरमेंट्स है जो पूरे करने हैं, तो आज आपके पास में मौका है, ये आप कर सकते हैं। और आज के लिए मौसम में ये फोकास्ट किया गया है खासकर ओकलैंड CBD में कि क्लाउडी पीरियड्स रहेंगे और साथ में रात को बारिश होने के पूरे चांसेस है। सनसेट आज का जो रहेगा 7:35 PM पर, और जो मिनिमम टेम्परेचर्स ओवरनाइट रहेंगे ये रहेंगे 15 डिग्रीज तक। और इसके साथ में नेशनली अगर जो देखा जाए तो इसी तरह का जो वेदर फोरकास्ट किया गया है पूरे के पूरे नॉर्थ आइलैंड के लिए, जो कि मैं मैप देख रहा हूँ, तो यहाँ पर सभी सिटीज़ में, टाउन्स में यही बताया गया है कि इट विल बी अ मिक्स्ड वेदर काइंड ऑफ डे, जहाँ पर बादल भी घिरे रहेंगे, बारिश भी होगी और बीच बीच में आपको धूप भी देखने को मिलेगी। तो थोड़ा धूप थोड़ा छांव जैसा दिन रहेगा। अरे धूप छांव से याद आया कि एक साड़ी हुआ करती थी मेरे ख्याल से, धूप छांव, आई डोंट नो वेदर इट इज स्टिल इन फैशन और नॉट, लेकिन धूप छांव करके एक साड़ी आती थी। अभी पता नहीं मिलती है या फिर अभी ये फैशन में है या नहीं, लेकिन जब धूप छांव की बात करते हैं तो इसी तरह का मौसम प्रेडिक्ट किया गया है नॉर्थ आइलैंड और साथ में साउथ आइलैंड के लिए। मैं अभी आपके साथ में, 11 अक्टूबर है, नवरात्रि आज से शुरू हो रही है। इसके अलावा अगर जो आप भी अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं या आपके फैमिली में कोई है जिसका जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह है, इसका संदेश आप हमारे पास में 5599 पर भेज सकते हैं। और इसके अलावा अगर जो आपको भी कुछ सुनना है तो सभी कुछ आपको सुनवाएंगे आपकी रिक्वेस्ट पर। ये सभी कुछ हैपनिंग ऑन हम अभी के साथ में विद जस्ट चिल।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: पॉइंट सिर्फ रोवा पर।
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
2: रुजबे 2026 में ना बहुत काम कर लिया है, अब तो ब्रेक बनता है।
3: बिल्कुल, तो लेते हैं एक लग्जरियस हॉलिडे ब्रेक, बाली और बैंकॉक।
2: और आप भी चलिए सन टूर्स के साथ ईस्टर 2027 में।
3: बाली 6 दिन और बैंकॉक 5 दिन, कंप्लीट लग्जरियस हॉलिडे पैकेज। बुक कीजिए टिल दिवाली और पाइए फ्री 2 nights 3 days सिडनी टू सिडनी क्रूज पैकेज।
2: 2027 ईस्टर को बनाइए एक्स्ट्रा स्पेशल, बाली बैंकॉक और फ्री क्रूज।
3: बुक नाउ विद सन टूर्स।
2: कॉल करें 0800 478686।
4: You know a restaurant's good when you can't get a table for 3 weeks. Just like it's a great sign if a specialist is booked till next month. And if a builder can't fit you in till the summer, you know it's probably worth the wait. So when we tell you that Diocesan School for Girls is generally booked 2 years ahead, that should tell you everything you need to know. So if you're thinking about what's next for your daughter, join us at our open day on Thursday, the 22nd of October from 9 till 11 a.m. Register at diocesan.school.nz.
5: Tick off your spring to-do list for less at Mitre 10. Save $50 on selected 10-litre solar guard exterior and roof paint. And get growing with 3 10-centimetre herb plants for just $18. T's and C's apply. Shop now at Mitre 10.
6: Few things sound better than logs crackling in a fire, rain on a tin roof, my voice, and the words you've won a pair of Bose headphones. Be in to win one of 50 pairs when you join Southern Cross Health Insurance by 11th of October. See website for details. T's and C's apply.
7: The Cooperative Bank's home loan crew are in the house. Check it. Got that home dream, but don't know where to start? Little Kiwi Saver and lots of listings bookmarked. LIMS, LVRs, what does it all mean? Been checking out listings since 2019. Deposit, pre-approval. How much can I borrow? Let's make a plan today for your tomorrow. Talk to the Cooperative Bank's home loan crew. From first questions to front door keys, we got you. T's and C's apply.
8: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने,
9: कभी भी कहीं भी।
10: हम पर, मैं हूं अभी आपके साथ में, और अब समय हुआ कि मैं कुछ आपसे सुनूं। हम तो कहते रहते हैं अपनी, और कहते रहेंगे 6 तक, लेकिन बीच बीच में आपसे भी सुनना बनता है ताकि आपकी भी आवाज़ हम सुन सके, आप भी हमसे बातें कर सके ऑन 0800 004 866। तो ये मुद्दा ऐसे उठा कि न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में एक जो शादी हो रही थी वहाँ का एक वीडियो वायरल हुआ। और वीडियो वायरल क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पर जो आउटडोर वेडिंग हो रही थी वहाँ पर माकी में यहाँ पर काफ़ी गेस्ट मौजूद थे और बारिश होने लगी, और बारिश होने पर जबकि गंभीर बारिश हुई तो काफ़ी बरसात के कारण जो माकी का कवा था ये कैविन होने लगा। और गेस्ट ने, क्विक थिंकिंग गेस्ट ने क्या किया, अपने अपने चेयर्स उठाए और अंदर से उस कवर को पुश किया अपवर्ड्स ताकि जो रुका हुआ बरसात का पानी है ये माकी से गिर सके और किसी भी तरह से माकी के अंदर ये पानी ना आ सके। तो इस तरह से उन्होंने उस डे को सेव किया। तो ये वीडियो देखकर मुझे भी याद आया कि कई जगह पर शादियों में हम जब टापलिन बांधते हैं तो ऐसा कुछ हो जाता है, लेकिन मैंने सोचा कि आपसे पूछूं क्या कुछ ऐसा आपके कोई इवेंट में, कोई सेलिब्रेशन में या फिर कहीं आप मौजूद थे, एक डिज़ास्टर होने वाला था लेकिन किसी ने आकर एट द राइट टाइम उस इवेंट को सेव कर लिया, जस्ट लाइक अ लाइफ सेवा। क्या आपको मालूम है कहीं आप गए थे और कुछ होने वाला था लेकिन किसी ने ऐन मौके पर आकर उस प्रोग्राम को बचा लिया, जैसे चौपट होने से ना लोग बचा देते हैं। एक इवेंट में मैं था जहाँ पर मैं होस्ट कर रहा था और एक हॉल में ये इवेंट थी, तो काफ़ी देर से लोग बोल रहे थे कि आप अनाउंस करो कि खाने का वक्त हो गया, और नेचुरली लोग काफ़ी वरीड भी होते हैं कि सही समय पर गेस्ट को खाना भी मिल सके। तो मैंने अनाउंस कर दिया कि अब बिल्कुल रेडी है खाना बांटने के लिए लोग, और आप जाकर अपना जो डिनर है ये कर सकते हैं। फिर उसके तुरंत बाद वो वापस दौड़कर आए और बोले कि आप अनाउंसमेंट वापस ले लो। मैं बोला वापस कैसे लूँ और क्यों लूँ अनाउंसमेंट, क्योंकि लोगों की अब कतार लग गई। तो फिर बाद में पता लगा कि राइस के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था उस इवेंट में, और सभी कुछ तैयार था परोसने के लिए लेकिन किसी ने राइस के बारे में नहीं सोचा था और राइस वॉज नॉट रेडी। तो लाइफ सेवा ऐसे हुआ उस इवेंट में कि किसी के जानने वाले पास ही में एक रेस्टोरेंट चला रहे थे और वहाँ से फिर उनको राइस बड़े ही शॉर्ट नोटिस पर मिल गया एंड समबडी सेव्ड द इवेंट। तो अगर जो आपके साथ में भी कभी ऐसा हुआ कि मामला बिगड़ते बिगड़ते बच गया है, इसके बारे में आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं तो गिव मी अ कॉल ऑन 0800-004-866 और आप भी शेयर कर सकते हैं। बिना नाम बताए भी आप शेयर करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। एक और एक गाना सुनते हैं। अगर जो इन द मीन टाइम आपके पास में कोई स्टोरी है, कहानी है जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं, फील फ्री टू डू सो।

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: On the waves of hum, मैं हूँ आपका साथी अवि और छह तक ये कारवा सिलसिला चलता रहेगा आपके साथ में. जो बातें हमने छेड़ी थी आपके साथ में ऑन दी एयरवेव्स, जहाँ पर हमने कहा था कि कोई इवेंट जहाँ पर कुछ ऐसा डिजास्टर होने को था लेकिन एन मौके पर किसी ने बचा लिया, तो हमारे पास में राजीव ने मैसेज किया है न्यू प्लिमथ से और कहा है कि आई वॉज एट अ वेडिंग जहाँ पर ग्रूम का जो पेंट्स था ये रिप हो गया था एक्सीडेंटली, और लकली इन्होंने अपना जो पेन से लास्ट मिनट स्विच किया एंड ही वॉज एबल टू सेव द डे. तो अगर जो आपके पास में भी कोई कहानी है जिसको आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं तो द नंबर इज 800-004-866 या फिर 5599 पर आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं. इसके अलावा पुलिस मांग कर रही है एक इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर जो किसी को मालूम है कल जबकि साउथ ओकलैंड के सबब मेंगरी में एक सीरियस असोल्ट हुआ जहां पर दो लोगों को चोट पहुंची है और ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा अंडरस्टैंड किया जा रहा है कि इस इंसिडेंट में एक गन भी इन्वॉल्व थी एक घर के बाहर ऑन हाउवेल प्लेस इन मेंगरी. तो अगर जो किसी के पास में जानकारी है तो पुलिस मांग कर रही है कि आप 105 पर कॉल करें और जो रेफरेंस नंबर है P0678-94182 ये कोड करके आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं. कभी भी आप अगर जो 105 पर कॉल करें या 111 पर कॉल करें एज अ विटनेस तो आपके पास में अधिकार है कि आप अगर जो अनोनिमस रहना चाहते हैं, अपना नाम या डिटेल्स एड्रेस फ़ोन नंबर नहीं देना चाहते, आप ऐसा उनको बता भी सकते हैं.

0: And I got my enrollment sorted the other day.
1: See, I told you it was easy.
2: Enrollment for voting? I still haven't done mine. The election isn't until November. I've got time, right?
1: No, not this year. You need to be enrolled by the 25th of October. You can't enroll and vote on the same day.
2: Really? What if I miss it?
1: Well, your vote won't count for this year's election.
2: Achcha! You've convinced me. I'll enroll tonight.
3: Last chance to enroll is midnight 25 October. Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
4: The beat of Bollywood.
5: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
4: Just chill.
6: जस्ट चिल है ये. कुछ 12 मिनट रह गए हैं एक बजने में और एक बजे के बाद आपके साथ में खेलेंगे फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून, जहां पर आपके पास में मौका रहेगा कुछ $5,000 वर्थ के प्राइजेस है इस दिवाली पर जीतने को विद हम. तो ये जो ड्रो है फ्राइडे 30th अक्टूबर को रहेगा, जस्ट इन टाइम फॉर दिवाली. तो एक बजे के बाद में आज का जो पहला मौका है ये आपको देंगे. तो कीप हमिंग एंड कीप लिसनिंग, क्योंकि ये जो चेंज है आपके हाथ से फिसलना नहीं चाहिए.

0: Just chill.
1: You're listening to Avineet.
2: That's right, हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में 1:01 हो चुका है और ये कारवा सिलसिला जस्ट चिल का चलता रहेगा टिल 6। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून जहाँ पर आप कुछ $5,000 वोट के प्राइजेस जीत सकते हैं इस दिवाली में, हम पर जो ड्रॉ है ये होने को है फ्राइडे 30th October को। तो आपके पास में मौका रहता है, जबकि अपने अपने शिफ्ट में हम आपको कुछ ना कुछ एक प्रमोशन देते हैं। तो इस बार के लिए आपको सिर्फ IH टेक्स्ट करना है, आपको IH लिखकर, जो कि इनडेलिबल होम्स का इनिशियल्स है, I फॉर इनडेलिबल, H फॉर होम्स, IH लिखकर स्पेस दे और अपना नाम लिखे और टेक्स्ट कर दे 5599 पर। जैसे ही आप टेक्स्ट करोगे आपके नाम को ड्रॉ में शामिल किया जाएगा, बट मेक श्योर कि ये जो फॉर्मेट है आपका बिल्कुल सही रहे, कि IH लिखने के बाद में आप स्पेस देकर ही अपना नाम लिखे, तभी आपके जो सही लेटर्स हैं IH ही होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी मिसटाइप हो जाता है जल्दी जल्दी में। लेकिन IH लिखकर स्पेस देकर अपना नाम लिखकर 5599 पर भेजे, जहां पर आप जीत सकेंगे $1,000 वोथ ऑफ फ्यूल वाउचर। और एक ही विनर ठहरेगा, $1,000 का जो फ्यूल वाउचर है ये आपके हाथ लग सकता है थैंक्स टू इनडेलिबल होम्स, जो कि आपके बिल्डिंग एक्सपर्ट्स है। अगर जो आपको किसी तरह से आपके सपनों का घर बनवाना है तो इनडेलिबल होम्स को ज़रूर कॉन्टेक्ट करें, जो कि रजिस्टर्ड